我们的 WhatsApp 电话号码是 8076-598706， 我们的电邮地址为 chinese@gmail.com， 谢谢大家的收听，再会。

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगीं।

This is Iran Lohar Nagri All India Radio Akashvani that is studio Zeebu Kota India New Delhi. Panyar anda tanya kumadi bersama staff seksi bahasa Indonesia mengucapkan apakan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashvani sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Berita utama. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengatakan bahwa hubungan antara India dan Jamaika ditandai oleh keseimbangan dan perubahan. Perusahaan rintisan antariksa India, Galaxy I, meluncurkan misi Drishti satelit Optusar pertama di dunia menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Uni Emirat Arab kembali melanjutkan operasi penerbangan normal ke berbagai destinasi di India setelah sempat dihentikan sementara di tengah konflik di Asia Barat. Presiden AS Donald Trump menolak proposal baru berlapis dari Iran yang bertujuan memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan damai. Dan dalam ajang kriket EPL, Gujarat Titans mengalahkan Punjab Kings dengan selisih 4 wicket di Ahmedabad tadi malam. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar mengatakan bahwa hubungan antara India dan Jamaika ditandai oleh kesinambungan dan perubahan. Ia menekankan bahwa hubungan ini berakar pada sejarah bersama diperkuat oleh kerjasama saat ini dan diarahkan menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu surat kabar swasta di Jamaika, Jaishankar mengatakan bahwa kedua negara harus terus bekerja sama untuk membangun kemitraan yang lebih mendalam dan tangguh, yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara serta berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih adil. Ia menambahkan bahwa diaspora India yang telah menjalin hubungan dengan Jamaika selama 180 tahun memberikan nuansa istimewa pada hubungan bilateral kedua negara. Jaishankar tiba di Kingston pada hari Sabtu mengawali rangkaian kunjungan sambilan harinya ke Jamaika, Suriname dan Trinidad dan Tobago yang bertujuan untuk semakin mempererat hubungan strategis dan budaya India dengan negara-negara di kawasan Karibia tersebut. Perusahaan rintisan antariksa India Galaxy telah meluncurkan misi Drishti satelit Optusar pertama di dunia menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari California. Wakil Presiden CP Radhakrishnan dan Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Galaxy seraya meneruti pencapaian ini sebagai tonggak sejarah penting dalam perjalanan antariksa dan inovasi India. Perdana Menteri menyatakan bahwa keberhasilan peluncuran satelit terbesar yang dibangunan oleh pihak swasta di India ini merupakan bukti nyata dari semangat kaum muda dalam berinovasi dan turut serta dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, Wakil Presiden Radhakrishnan mengatakan bahwa misi Drishti menandai langkah maju yang signifikan bagi ekosistem antariksa komersil India. Berkat kemampuannya yang canggih dalam melakukan observasi bumi di segala kondisi cuaca dan sepanjang waktu 24 jam. Kementerian Luar Negeri MEA menyatakan bahwa jalur Lepu Lake
तेला मंजादी रूट यांगदी गुनाकान से जकलामा उन्तु कैलास मानसरोवर यात्रा सजग ताहून सर इबू सम्मिलान रातु लिमापुरु एमपात दन मनिंग आसकान बाबा हाल इनी बुकानला पुनर्कम परकम मांगन बारू जुरु बिचारा रश्मिका मंत्रियान लोअर नगरी रणधीर जयसवाल मंजुवा परतान्या मीडिया मंगनाई कॉमेंटार यांग दिलोंतरकान उल्लेख मंत्रियान लोअर नगरी लेपार तरकैत इथु पर्वतासान दालाम कॉन्टेक्स कैलास मानसरोवर यात्रा जयसवाल मंगतकान बाबा जलू लिपुले तेला मंजादी रूट यांग दिगुनाकान से जखला मा उन्तु कैलास मानसरोवर यात्रा सजगता हूँ सरितुस सम्मिलान रातु सरिबू सम्मिलान रातु लिमा पुलुम पास नंजेरा मरलूर इनी तेला बरलांगसुंग सलामा बर बरापा डेकेद हाल इनी बुकाना बर कमांग बारू मंगनाई क्लेम विलाया ओले नेपाल या मनरकान बाबा इंडिया सहर सचारा कंसिस्टेंट बर पेंदे बन दपात बाबा क्लेम क्लेम तरसेबुत तीरा दपात दी बनारकान दान तीरा तीरा सरकान पारा भागता सजा सत्ता बुक्ति जे सजारा पढ़लू आसान क्लेम विलाया यांग बरसिफात आर्टिफिशियल दान सब यह समाचार इतु तीरा दपात दी बर हस्ताहान कान्या तंबाहान्या एवं ये जुगा मनगास कान बाबा इंडिया तेता बतरबू का उन्तुक मंजालिन इंटरक्सी यंग कंस्ट्रक्टिव जिंगान नेपाल तरकैत समूह ईसु दालाम होमुंगान बिलेट्रल सर्वसुक दालाम पनेले सैकान ईसु ईसु परबादासान यांग बलुम चुनतास दानतेला दिप्रस दिसेपाक्तिक मललोई जालोर डायलॉग दान डिप्लोमासी सबलुम न्याका मंत्रियान लुआर नगरी नेपाल मनेले सबुआ पढ़ने आतान यांग मनेगास्कान बाबा पमरिंता नेपाल मम्मिली की सिक्का प्यांग सांगा जिला जान तगु मनिंगाई फाक्ता बाबा लिम्पी या दूरा लिपुले दन काला पानी यांग तरलेताक दि सबला तिमूर सुंगाई महाकाली मरुपकान बागियान ताक तर पर सिहान दारी विलाया नेपाल से जाक दी ताडांग गानी न्या पर जानजियान सुगौली परता हूँ सरिबुत लपान रातो सुनम्बलास पर न्यातयान तरसिबुत जुगा मन्यबुत कान बाबा नेपाल तेला मनम पाइकान क ख्वातिरान न्या कपाड़ा इंडिया दान थियों को मललुई सलूरान डिप्लोमैटिक तरकाइत कैलास मानसरोवर यात्रा यांग दिसिबुत दिसलिंगार कान दिंगान मलिंतासी विलाया नेपाल यायतु लिपुले उनी अमीरात अरब तिलामा लांजुत का नौपरेसी बनरबांगा नॉर्मल कबर बगाई तुजुआन दी इंडिया सतला सौ एम्पाती हंतिकान समंतारा दी तेंगा कॉन्फ्लिक्ट दी एशिया भारत लांगा इनी दी आम्बिल सतला ऑथोरिटास बनरबांगान सेपिल उमुम उईए मंगुमकान दी मुलाई न्या कंबारे सपनू न्या ऑपरेसी ने

दोराई स्वामी तिबारी बीजिंग हारी इनी कदुतान बसारे इंडिया ते बीजिंग मनतकार मला लुई सबुआ उंगुहान दी मीडिया सोशल बाबा इया दिसांपुत ओले कुआसा उत्साह कदुतान इंडिया एंजलिन प्रेमलता सरता वकील डायरेक्टर डिपार्टमेंट आसिया का मंत्रियां लोअर नगरी चाइना ली चियानबो गरंग पुती देला मंगेन फार्मासी बाबा निक स्विटर्ड तेला दी तुंचुक सबगाई पन नसीहत बागी टीम डिप्लोमेटिक या पर्तुगुस मंगु पायान पंग पंगाखिरान कॉन्फ्लिक यांग सदांग बरलांसुंग देंगान ईरान दलाम सबुआ पर नयातयान जुरु बिचारा ओलिफिया वेल्स मंडस क्रिप्सान स्टीवर्ट सबगाई ओरांग पाकर कबिजान कब्बर पंग लामान यंग अकान मंबरी कान दुकुंगान कपारा डेलीगासी यंग दी पिम पिम ओले ओतुसान खुसुस स्टीव विक्टॉफ स्टीवर्ट सब लुमना परना मंगनाई इसु तरकैत ईरान दे डिपार्टमेंट लोअर नगरी अमेरिका सारी का सलामा मासा पमर इंतहान प्रदमा प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पजावत अमेरिका सरेकत मनिबुत कान बाबा पर पनुन जुन कान्या दे फैसिलिटासी ओले जेरेत खुसनुर सबलूम मंगनेगाम्बान परान इनी स्टीवर्ट ममिली की कदर कई तान दिंगान फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसिस यायासान प्रतानान डेमोक्रेसी सबुआ लंबागा यांग दी के नाल काम गेंचार मरुसा कान सिका प्यांग लब्बी क्रास सरहडाप ईरान पर कंबांगान इन्नी मुन चुली तंगा से चोसी दीमाना ईरान बारू सजा मंग जा जुकान प्रपोजल तांडिंगान तरहडा प्रंचाना पर दमायान संबिलान पॉइंट यांग दुदुंकान ओले अमेरिका सरिकात बुरसा साहम पाकिस्तान किनी दक्षतात सबगई सारा सातु बुरसा दिंगान किंजारा तर बुरुक दी दुनिया सबुआ कोंडियुसी यांग दी पिचू ओले कतर गुन गांतुंगा नगारा तरसे बुत्यांग सांगा तिंगी तरहडाप इनर्गी इंपोर्ट कॉम्बिनासी अंतारा लोंजा कान बियाया यांग तक तर किंडाली दंतर भंबातन्या आरोस इंपोर तेला मंबरी कान तेकानान यंग तेरात बरात तरहडा पोसीसी एक्सटर्नल नगारा तरसे बुत्यांग मेंगांग सुधा रापू पर इकोनोमियान पाकिस्तान यंग सदांग तरपुरुक तिपर की रकान अकान तरुस तर हिमपित ओले लाजू इंफ्लेशित दुआ दिगित जेका हारगा मिन्याक्लोफल मनोलोक दितेंगा क्रिसिस यंग मिलंदा कवासान आसिया बारात दमिक्यान ताड़ी वर्ता बड़ी ताबड़ी कुतनिया लागो इंस्ट्रुमेंटालिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
0: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
2: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
0: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पहले चरण में सभी 6 मतगणना

0: मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
2: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में दो दो तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
3: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
3: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
3: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
3: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नवभारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च, चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Counting of votes begin for assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. Counting of votes also underway for bipoles in 7 assembly constituencies. India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipu Lake Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
7: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers. And there are 77 counting centers in the state. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Falta assembly constituency on that will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
6: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
2: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago under tight multi-layer security arrangements. The state has recorded a high voter turnout of 85.96%, the highest in the last 5 Assembly elections. Counting is being conducted at 40 centres across the state. While most districts have one counting centers each at their headquarters, Kokrajhar, Tinsukia, Jorhat have 2 centers each and Nogaon has 3. The entire process is being monitored by 126 counting observers with support from nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers. A total of 722 candidates are in fray for the 126-member assembly. The majority mark to form the government stands at 64. Back to you.
6: Thank you, Rakesh. Moving on to Keralam, where we have our correspondent Smithy Paluruthi. Smithy, how is the counting going on for the Keralam Assembly elections?
8: Anuja, counting of postal vote began at 8 a.m. in 140 constituencies across 43 locations in Keralam. EMVs will be brought in for counting within the next few minutes. Initial trends are expected by 9:30 a.m., Anuja. At the same time, all three political fronts are expressing strong confidence about the result. The LDF is anticipating a continuation power, while the UDF is expecting strong comeback. The NDA is hopeful of emerging as a decisive force in the Kerala Assembly. Anyhow, we will have to wait for just 2-3 hours to get a clear picture of the outcome. So let's wait for that, Anuja. That's all, Anuja.
6: Thank you, Smithy, for that update. And now we go over live to Puducherry, where we have our correspondent Bibin S. Nath. Bibin, tell us, how is the counting progressing in Puducherry?
9: Anuja, in the first round, votes from 17 assembly constituencies will be taken up across all

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हो गई है। दोपहर तक इब्तदाई रुझान आ जाने का इम्कान है। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आसाम में 126 असेंबली सीटों, केरलम में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। मगरबी बंगाल में आज 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि फालता असेंबली के लिए 21 मई को दोबारा पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। केरलम में 140 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: केरलम में 140 असेंबली हलकों में पोस्टल वोटों की गिनती 43 मकामात पर अभी शुरू हुई है। शुरुआती रुझान सुबह 9:30 बजे तक मिलने का इम्कान है। हुक्मरान एलडीएफ इत्तेहाद अपना इख्तदार जारी रहने की उम्मीद कर रहा है, जबकि यूडीएफ इत्तेहाद के इस मरतबा वाजा अक्सरियत हासिल करने का इम्कान है। दूसरी जानिब एनडीए पुर उम्मीद है कि वो केरलम में एक फैसला कुन ताकत के तौर पर उभरेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: और अब तमिलनाडु में वोटों की गिनती के बारे में हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट।
2: आज 234 हलकों के लिए राय दहिंदगान को अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। आज ये भी पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियों, टीवी चैनलों और लोगों के जरिए पेश किए गए एग्जिट पोल कितनी हद तक दुरुस्त हैं। इस बात का इम्कान है कि लोग गिनती के मरकज में जमा होंगे और रियासत और नीम फौजी अमले को मरकज जो के बाहर तैनात किया गया ताकि सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाया जा सके। वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी की कानून साज असेंबली के चुनाव के लिए वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 6 मखसूस मरकजों में जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुल 294 उम्मीदवार गिनती के इस अमल में अपनी सियासी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पहले राउंड में वोटों की गिनती 17 असेंबली हलकों के सभी 6 मराकज में की जा रही है। इसमें पुदुचेरी खित्ते के 12 हलके भी शामिल हैं, जिनमें कराईकल में 3, माहे और यानम में 1-1 हलका शामिल है। बाकी 13 हलकों में दूसरे राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। उम्मीद है कि इब्तदाई रुझान सुबह तकरीबन 9:30 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। गिनती के मराकज के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स और माइक्रो मुशाहिदीन समेत कुल 859 एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पोस्टल बैलेट्स के लिए 35 टैबलेट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट गिनती के लिए 166 टैबलेट्स लगाए गए हैं। वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी और रसाई के कंट्रोल इकदाम के तहत की जाएगी और चुनाव हुकाम की जानिब से जारी किए गए QR कोड पर मबनी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ही दाखिले की इजाजत होगी। पुदुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: उधर मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह गिनती के 77 मरकजों में शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम

0: समाप्त कर लिए गए हैं और गिनती के लिए चुनाव अमला पहले ही मराकेज में पहुंच गया है। 294 सीटों में से असेंबली के 293 हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो रही है। गिनती के हर मरकज में 3 सतही सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जहां जिला पुलिस, रियासती पुलिस और मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी फोर्सेस की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 गिनती के मराकज के 100 मीटर के अंदर लागू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इस हद को बढ़ाया भी जा सकता है। कमीशन ने इस अमल के दौरान फराइज में किसी किस्म की कोताही के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खबरदार किया है। भारत के चुनाव कमीशन ने फालता असेंबली हलके के लिए चुनाव को कलअदम और बातिल करार दिया था। फालता में 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। आज सिर्फ 293 हलकों में वोटों की गिनती हो रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 5 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के लिए हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी आज सुबह शुरू हो गई है। ये 7 सीटें हैं गुजरात में उमरेत, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे साउथ, महाराष्ट्र में राहौरी और बारामती, नागालैंड में कोरीदांग और त्रिपुरा में धर्मानगर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय बिरादरी के अफराद से गुफ्तगू की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि जमैका के वजीर आजम ने उनसे मुलाकात के दौरान भारतीय बिरादरी के ग्रां कदर तआवुन का जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं ने खासतौर पर बुनियादी ढांचे, इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर मबनी हुक्मरानी और छोटे कारोबार के शोबों में जारी यकसर तब्दीली के बारे में तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत जमैका ताल्लुकात में हुई हालिया पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डॉ जयशंकर इस माह की 10 तारीख तक जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में एक शिमाली टेक सिंपोजियम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका उन्मान है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां टेक्नोलॉजी, सनत और सपागरी यकजा होते हैं। वजारत दिफा ने बताया कि इस सिंपोजियम से फौजी कार्रवाई को दरपेश चैलेंजों के लिए मुल्क ही में तैयार की गई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को नुमाया और मजबूत करने का एक फाल प्लेटफॉर्म फराहम होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका उन मुल्कों की रहनुमाई के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा जिनके जहाज आबनाए हुर्मुज में फंसे हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस कोशिश से सैकड़ों जहाजों और तकरीबन 20,000 जहाजरानों को मदद मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार और बेकसूर मुल्क ईरान जंग से मुतासिर हुए हैं और ईरान और अमरीका ने इन मुल्कों से कह दिया है कि वो इन पाबंदी वाली आबी गुजरगाहों से उनके जहाजों को बहिफाजत निकालेगा ताकि ये जहाज आजादी के साथ अपनी मंजिलों को रवाना हो सकें। अमरीकी वस्ती कमान ने कहा कि इस कदम में गाइडेड मिसाइल शिकंद हथियार, 100 से ज्यादा तैयारे और अमले के 15,000 से ज्यादा अरकान शामिल होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कोई पेशरफ्त नहीं हुई है क्योंकि अमरीका ने तनाजे को खत्म करने के ईरान के मुजवजा खाके के बुनियादी निकात से इनकार कर दिया है, यहां तक कि मगरबी एशिया में जंगबंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया है। ईरान हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने ईरान के 14 निकात के मंसूबे का जवाब दिया है जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस जवाब पर फिलहाल गौर-खोज़ किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तजवीज़ का जायजा लिया था, उन्होंने इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है जिससे अमेरिका के किसी सख्त मौकिफ का इजहार होता है क्योंकि ये बातचीत बिलवास्ता तौर पर सालिस के जरिए की गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि उसे अपनी 14 निकाती तजवीज पर अमेरिका का जवाब मौसूल हो गया है और फिलहाल इसका जायजा लिया जा रहा है। ईरान में अफसरान ने कहा है कि इस मंसूबे में मुखासमत को खत्म करने पर तवज्जो दी गई है, इसमें न्यूक्लियर मामले पर कोई बात नहीं की गई है जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तजवीज पर शक का इजहार किया है कि जिससे इशारा मिलता है कि इससे अमरीका के खासतौर पर न्यूक्लियर बंदिशों से मुतालिक मुतालबात पूरे नहीं होते। इधर جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ میں معاہدے کے باوجود شدت آ گئی ہے اور دونوں ہی طرف سے بار بار خلاف ورزی کی اطلاعات ملی ہیں. اسرائیلی فوجوں نے فضائی حملے تیز کر دیے جن میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جنوبی علاقوں کے شہریوں سے کہا گیا کہ وہ یہ جگہ خالی کر دیں کیونکہ فوجی کاروائی

0: दवाई दीगर अंकों में भी की जाएगी। दुबई से प्रसार भारती के खसूसी नामानिगार विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है और इसे 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक देरीना रास्ता करार दिया है और कहा है कि इस रास्ते से यात्रा कई दहाइयों से जारी है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने यह बात मीडिया के कुछ सवालों के जवाब में कही। ये सवालात सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा के सिलसिले में नेपाल की वजारत खारजा की तरफ से किए गए सरहदी मामलों से मुतालिक दावों के बारे में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिलसिले में भारत का जवाब मुस्तकिल और वाजह है और ये कोई नया वाकया नहीं है। जहां तक इलाकाई दावों का जिक्र है तो जनाब जायसवाल ने इशारा दिया कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि न तो ये दावे मुनसिफाना हैं और ना ही तारीखी हकायक और शवाहिद पर मबनी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इलाकाई वसत के यकतरफा मसनूई दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारत दोतरफा ताल्लुकात में सभी मामलात पर नेपाल के साथ एक तामीरी बातचीत के लिए तैयार है जिसमें मुजाकरात और सिफारती कोशिशों के जरिए तस्फिया तलब सरहदी मामलात पर इत्तेफाकी राय कायम करना भी शामिल है। हैदराबाद में आजमीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन के लिए रवाना हो गया है। अकलियतों के फलाह बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली में हज हाउस से बाकायदा तकरीब के दौरान आजमीन हज को रवाना किया। अजहरुद्दीन ने आजमीन हज को मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब में खुद को इबादत में मसरूफ रखें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। उन्होंने उनसे यह भी अपील की कि वो सऊदी अरब के तमाम कवानीन और जाब्तों पर पूरी तरह अमल दरामद करें और तेलंगाना की तरक्की के लिए भी दुआ करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना सरकार आजमीन हज को बेहतरीन सहूलियात और तआवुन फराहम करने के तहत अहदबस्ता है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में आज गर्मी और हवा में नमी का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा था, जिसे उसने एक गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
2: शुक्रिया असलम। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में वोटों की गिनती आज होने को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर के तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक मगरबी बंगाल पर सबकी निगाहें मरकूज, इलेक्शन कमीशन ने वोट शुमारी के लिए किए पुख्ता और गैर मामूली इकदाम। रोजनामा इनकलाब ने खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम कामयाबी के तौर पर दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किए जाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक भारत अब हर मौसम में जमीन के हर कोने पर नजर रख सकेगा। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया कि अपोजिशन पार्टियां जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही हैं और ये कि मुल्क के अवाम वक्त आने पर उनकी ऐसी कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के इतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमा मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: direction of the BJP, and
1: जनादेश 2026
2: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
3: जनादेश 2026 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की गिनती चल रही है और हम ताजा रुझान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ को एंकर हैं निशित कुमार, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
0: यस, बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक, उमेश, वी वर टॉकिंग अबाउट असम 33 seats for the BJP. It seems for the moment going their way out of the 38 trends, of course, trends very early days as of now. And we were talking about the West Bengal, Umeshji, this time 92%+ of voting that actually gave some direction to which way it probably, because generally it has been the trend, generally it has been like a feature that whenever there has been bumper voting or something like this happening, it has been like it goes the other way, as that is the anti-incumbent way.
4: अब बिल्कुल, और एक चीज़ और भी है जो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल को नकारने की शुरुआत की थी।
0: yep.
4: उसको बहुत जोर शोर से नकारा भी था, लेकिन एक चीज़ ध्यान में, हम लोग क्या है ना, अपनी स्मृति बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी स्मृति बहुत कमजोर होती है। 2005 का दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार जो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसमें एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन एलजेपी ने समर्थन नहीं दिया, तो बाद में हंग असेंबली भंग हुई थी। और फिर दोबारा जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, चुनाव आयोग के जो सलाहकार थे उस समय केजे राव, उन्होंने भारी संख्या में गैर बिहार के राज्यों से, पंजाब से, तमिलनाडु से फोर्स बुलाई। और आप जानते हैं कि सिवान जो सबसे मशहूर और सबसे चर्चित जिला होता था, जहां आप सोचिए कि सीधे सीधे पुलिस अफसर से वहां के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे मुकाबला किया था, वहां पंजाब पुलिस ने चुनाव कराया था। कुछ कुछ यही स्थिति इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है। जो
0: इन द मीनवाइल देयर इज दिस ब्रेकिंग न्यूज दैट स्टालिन, मिस्टर उदय निधि स्टालिन, ही इज काइंड ऑफ नॉट लीडिंग एट दिस मोमेंट सो फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फॉर द मोमेंट।
3: जी बिल्कुल, अगर ताजा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल, जिस पर सबकी नजरें हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9 पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है। संजीव जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें, वहां पर हिमंता बिस्वा सरमा की जो छवि थी, उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में, और काफी आक्रामक प्रचार किया, खासकर कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने, हमने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद किस तरीके से मामले रहे, लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, एक तरफा बंपर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है।
5: जी बिल्कुल, कांग्रेस वहां उन्होंने कोशिश करी कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे करने की और एक तरह से जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको आगे चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, मतलब द ग्राउंड सिचुएशन को पकड़ नहीं पाई। तो हिमंता बिस्वा सरमा फर्मली इन सैडल हैं, और जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बोल रहे थे कि हिमंता बिस्वा सरमा बीजेपी लेड अलायंस पूरा बहुमत से आगे आ रही है, तो रुझान इनिशियल जो आए हैं, हालांकि ये इनिशियल है बहुत, और अभी पहले पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम शुरू होंगे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस डेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस पकड़ नहीं पाई ग्राउंड सिचुएशन।
3: हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि असम में क्या विकास के नाम पर मतदाताओं ने वोट किया या कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला?
5: मैं कहूंगा कि दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष ज्यादा निर्भर किया है।

0: इस इलेक्शन में। प्लस बीजेपी यू नो इस इलेक्शन को पोलराइज भी कर पाई है, जैसे कि उन्होंने घुसपैठियों की बात बहुत करी है, यू नो जैसे ऑल टॉप लीडर्स अमित शाह इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों की बात की, घुसपैठियों को निकाल देंगे। फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा कोशिश करी नेगेटिव राजनीति करने की, कि हिमंता बिस्वा सरमा की वाइफ को और उनकी करप्शन को लाने की आगे कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं, वो उल्टा पड़ गया और वो कांग्रेस अपने उसमें एम्ब्रॉयल हो गई। तो ग्राउंड सिचुएशन, और अगर आप देखें कि इलेक्शन से कुछ देर पहले यू नो फॉर्मर कांग्रेस एमपी, यू नो कांग्रेस का सिटिंग एमपी, कांग्रेस के कुछ देर से जैसे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ राजनीति जा रही है। यू नो राजनीतिक जो राजनीतिक के होते हैं पॉलिटिशियंस बहुत समझते हैं आगे कि कैसे आगे क्या चल रहा है। तो जैस जिस तरह से एक से बाद एक दूसरे कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी स्ट्रांगली इमर्ज कर रही है।
1: Right. In the meanwhile, Suvendu Adhikari of the BJP is leading from both the seats, that is Bhavanipur and Nandigram. This is big. This is humongous. Sanjeev ji. And also, we were talking, discussing about Assam. One thing, of course, is that how the Congress party kind of dealt into that negative campaigning, if you may say that. And the BJP mostly, of course, the incumbent Chief Minister, Mr. Sarma, has been very aggressive right from the very beginning. But at the same time, probably he has delivered on the ground as well.
0: That's right. Assam has been a traditional Congress stronghold. But over the years, Hemanta Biswa Sarma was the blue-eyed boy of Mr. Tarun Gogoi, who was the chief minister for a very long time there. Now, the Congress tried to play its card on carrying on the legacy of Mr. Tarun Gogoi by putting forward his son, Gaurav Gogoi, as their leader. However, on the ground, you know, it seems that the Congress has lost its you know charm on the ground, because Hemanta Biswa Sarma knows the area, you know, the state,
1: and
0: entire
1: also the
0: state.
1: pulse of the people. Yes, he
0: So
1: is. Yes.
0: he's been focusing on the people. He's been focusing, you know, and the BJP on the other hand is giving it a fillip by adding the angle of you know infiltrators and you know those who migrated from Bangladesh and all that. So on one side, you know, development is going on. On the other hand, you know, this narrative is also going on. So Congress could not actually capture the narrative in the state.
1: Right. Umesh ji, we were just discussing about West Bengal and the bumper voting which happened this time, 92 plus percent. This is humongous. Now, there has been this talk of infiltration, the Rohingyas and all, you know, crossing into the Indian side from Bangladesh and other parts as well. So now, this time, it seems the central leadership as well as the Election Commission, they have been kind of holding fort with very, you know, that strong kind of iron fist. How far do you think that the tightening of the screws, so far as the security and these things are concerned, has any bearing on these election results?
2: दो चीज़ें हैं। पहले तो आपके सवाल में दो चीज़ों का और इशारा है। पहला तो ये है कि घुसपैठ को लेकर के इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसको मुद्दा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाया किसने था। खुद ममता बनर्जी ने। और अगर आप याद कीजिए 2011 के चुनाव में उन्होंने खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि केंद्रीय बलों की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो। तो वो खुद मानती थी कि उस समय जो वेस्ट बंगाल की पुलिस या कोलकाता पुलिस है उसकी निगरानी में चुनाव सही तरीके से नहीं हो सकते। उम्मीद ये हो थी की जा रही थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी शासन में, जो आई भी 2011 में, तो आएंगी तो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सॉल्व करेंगी, उसका उन समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन ठीक उसी तरह से वो उसी राजनीति में पगती चली गई जिस राजनीति में पहले सीपीएम की लीड वाली सरकारें होती थीं और जिसका वो विरोध करती थी। तो घुसपैठ तो उनका मुद्दा था, भारतीय

0: डाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भले वो कहे ना कहे सार्वजनिक रूप से कि जहां के उसके संस्थापक थे वहीं वो नहीं अपनी
1: घर
0: कपनियां
1: घर
0: मतलब।
1: घर
0: हाँ,
1: छोड़ने वाली
0: और
1: घर
0: दूसरी
1: छोड़ने
0: एक
1: वाली
0: चीज
1: बात
0: और
1: है
0: याद कीजिए कि लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा ट्रेमेंडस विकास हुआ है। 1967 में जो संविद सरकारें बनी थी, 7 राज्यों में कांग्रेस सीधे सीधे हारी थी, तो उस समय विपक्ष का जो गठबंधन था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था। और उस भारतीय जनसंघ की ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उसमें से 24 परगना जिले की एक सीट गोसाबा पर गोविंद चंद्र मंडल जीते थे। वो SC रिजर्व सीट थी, और पहली बार जनसंघ ने 1967 में खाता खोला था, और बाकी 57 सीटों पर वो नहीं हारी थी। तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मलाल रहा है
1: जी
0: भारतीय जनता
1: बिल्कुल
0: पार्टी का। और दूसरा जो घुसपैठ वाला मामला है ना, घुसपैठ के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत उछाला है, खासतौर पर 2016 के बाद से ही वो लगे हुए हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं
1: जी
0: आनंद?
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: पश्चिम बंगाल में इस समय 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों पर आगे नजर आ रही है, और तृणमूल कांग्रेस को शुरुआती रुझान में 25 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। संजीव जी, तमिलनाडु में जो इस समय स्थिति बन रही है, 26 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जहां DMK 11 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है, AIADMK 6 पर आगे है, लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK। देखिए इस समय वो 6 पर आगे चल रहे हैं और AIADMK भी 6 पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल में कुछ ने उनको ट्रिपल डिजिट में भी सीटें दी हैं, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
2: देखिए तमिलनाडु की राजनीति हमेशा आप देखेंगे काफी अरसे से पर्सनालिटी बेस्ड रही है, चाहे वो MG रामचंद्रन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, और अब नया फैक्टर जो आ रहा है वो विजय है। तो विजय एक्टर रहे हैं तो, और उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है। आपने देखा होगा उनकी रैलीज में कितना बहुत रश होता है
1: जी,
2: और एक रैली में तो
1: बड़ी तादाद में नजर आए,
2: महिलाओं का भी सपोर्ट उसको है। तो आप देखेंगे यूथ और महिलाएं जहां जा रही हों, तो इसीलिए अभी सबसे बड़ी बात यह है तमिलनाडु में जो देखने वाली कि द्रविडियन पार्टीज जो होल्ड करती थी फोर्ट, जो राज करती थी पहले, कांग्रेस करा करती थी बहुत पहले, लेकिन जब से द्रविडियन पार्टीज आई, जो रीजनल आइडेंटिटी को और लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये जो पार्टीज आगे आई, उसके बाद से आइदर वे DMK या AIADMK दोनों अल्टरनेटिवली पावर में आ रही हैं। कुछ 2 बार 3 बार आती हैं, फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं, लेकिन इस बार द्रविडियन पार्टीज को पिछड़ने मतलब कि क्या वो पावर से बाहर जाएंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और TVK एक होप दे रहा है यूथ को वहां की और महिलाओं को, और अगर इन दोनों की सपोर्ट है तो आई थिंक महिलाएं 50% ऑलरेडी हैं, और यूथ प्लस कर लो आप 25%, मतलब टोटल यूथ 42% है वहां स्टेट में।
1: बहुत संक्षेप में, चूंकि हम न्यूज ब्रेक के लिए भी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी विजय को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उनके साथ एक समझौता करना चाहती थी। खबर यह भी थी कि राहुल गांधी TVK के साथ समझौता करना चाहते थे। क्या विजय को इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले दम पर तमिलनाडु में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले लड़े?
2: अकेले इसलिए भी लड़े उन्होंने कि अपनी आकलन कर लें कि कितनी उनकी पोजीशन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे क्योंकि उनको मास बेस्ड सपोर्ट था उनकी रैलीज में जैसे आए, हालांकि रैलीज एक यार्डस्टिक नहीं माना जाता। रैलीज ममता बनर्जी की भी लेफ्ट के टाइम बहुत होती थी, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बट पावर में नहीं आ पाई, लेफ्ट को डीथ्रोन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो जैसे लग रहा है, और प्लस BJP के साथ वो पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कुछ लाइक माइनॉरिटी वोट्स को एंटी हो जाती, तो प्री पोल अलायंस की जगह मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है अगर वो ऐसी इमर्ज करके आए, क्योंकि उनकी अगर पार्टी 3 फिगर में आए तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है।
3: राइट वेरी ब्रीफली बिफोर वी स्लिप इनटू अ ब्रेक फॉर केरला, द LDF इज लीडिंग इन 8 सीट, द UDF इन 21, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली द BJP एज वेल इज लीडिंग इन 3 सीट्स, द BJP प्लस दैट इज द अलायंस इन केरला। उमेश जी, संजीव जी विल बी स्लिपिंग इनटू अ क्विक ब्रेक फॉर नाउ फॉर द न्यूज बुलेटिन्स, एंड विल बी बैक एट 9:10 AM जस्ट इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ with more and more discussions and more analysis. So listeners, just don't go away. Stay tuned and we'll be back right now.

0: जनादेश दो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 293 सीट में से 54 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 41 सीट पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 11 सीट पर आगे चल रहा है। अन्य दो सीट पर आगे चल रहे हैं। राजकीय फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीट में से 26 सीट के रुझान मिल गए हैं। AIADMK गठबंधन 6 सीट पर आगे चल रहा है। DMK गठबंधन 13 सीट पर आगे है और अन्य 7 सीट पर आगे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की 140 सीट में से 31 सीट के रुझान मिल गए हैं। UDF 20 सीट पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 3 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि LDF 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। असम में विधानसभा की 126 सीट में से 43 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 36 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। उधर 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी हो रही है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलाकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं।
0: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर दी थी। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। यूरोपीय देशों के नेता 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं। आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन EPC में शामिल होंगे। कल पहला यूरोपीय संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होगा। इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आर्मेनिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देश भर से MSME निजी रक्षा प्रौद्योगिकियां कंपनियां, स्टार्टअप्स और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इतिहास का दिन है। सुबह की हर किरण के साथ खुल रहे हैं लोकतंत्र के वो पन्ने जिन पर जनता ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम तक, तमिलनाडु से असम और पुदुचेरी तक, हर राज्य एक कहानी कह रहा है, उम्मीदों की, संघर्ष की और सत्ता की। कहीं ताज बचेगा, कहीं तख्त बदलेगा, कहीं सपने सच होंगे तो कहीं वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल जहां हर वोट एक संदेश है, केरलम जहां विचारधाराओं की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है, तो वहीं तमिलनाडु जहां सत्ता की बिसात पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। असम नेतृत्व की परीक्षा है, तो पुदुचेरी जहां सत्ता की वापसी या बदलाव की पटकथा लिखी जा रही, सबसे बड़ा उत्सव है जिसकी हर धड़कन, हर अपडेट, हर मोड़ हम आपके लिए जनादेश 2026 में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे को एंकर निशित कुमार और हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दो राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026। एज आनंद वाज मेंशनिंग, वी आर कवरिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली राइट फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु टू केरलम टू पुडुचेरी। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट when it comes to breaking news as well as insights, political analysis, more and more. So just stay tuned. And for now, when it comes to West Bengal, the BJP is leading on 48 seats, up 21 from the last time, Trinamool on 29, down 24 from the last time, that is 2021. This is so very significant. And when it comes to Assam, the BJP is leading, the BJP Plus is leading on 42 seats. In Keralam, the LDF on 15 and the UDF on 31 seats. And BJP, more significantly, BJP Plus, that is, on 3 seats in Puducherry. Just one trend at the moment coming. And Sanjeevji, if we may begin with you again. When we talk about the West Bengal, 48 seats at the moment for the BJP, this is tremendous. Of course, as the exit polls would suggest that this would be neck and neck, but it seems to be going the other way around this time.
4: Yeah, it seems it's going one way. And for the BJP, which has been, earlier the Jan Sangh and earlier the Hindu Mahasabha, you know, Hindu Mahasabha had a government in West Bengal in the pre-partition days. Mm. So it would be a return in power for the BJP. And, going by the trends, Mamata Banerjee is also trailing in her Bhabanipur constituency where Subhendu Adhikari is, leading. So for Subhendu Adhikari, who has emerged as the leader for the BJP, it will be a double triumph because last time also he defeated Mamata Banerjee from Nandigram. Mm. And this time he's contesting from Nandigram as well as Bhabanipur.
3: Yes.
4: So it will be a real double for him. And the indications right now are that the reign of Mamata Banerjee, is coming to an end because all eyes are on West Bengal. Mm. Because this has been the most crucial election. And Mamata Banerjee has also fought, both Mamata Banerjee and the BJP have fought very strongly, this time.
3: Right. And
2: असम में जो ताजा रुझान है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सरकार बनाने की तरफ भी आगे जा रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से पहला रुझान सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। दिलचस्प लड़ाई तमिलनाडु में जारी है जहां पर सत्ताधारी डीएमके 12 सीट पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पर आगे है, लेकिन वहां पर सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके 14 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 6 पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। और सबसे बड़ी चर्चा जो पश्चिम बंगाल पर चल रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी ताजा रुझानों में 49 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 30 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर आगे है, जबकि अन्य जो हैं वो 1 पर आगे हैं। उमेश

0: जी, अगर बंगाल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच बहुत बड़ा गैप था, लेकिन पिछले 15 मिनट में, यानी जो हमारे श्रोता समझ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आधे घंटे चलता है अब जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने उस गैप को कम तो किया है।
1: बिल्कुल कम किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उससे लगभग 60% ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। पिछली बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 38 सीटें ऐसी थीं जो वो 5% मार्जिन से, उससे भी कम मार्जिन से वो सीटें हारी थी, और करीब 43 सीटें ऐसी थीं जहां 10% के मार्जिन से वो हारी थी। इन सीटों पर उसने बहुत काम किया है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो बताते थे कि हमने इन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और है, जो अल्पसंख्यक बहुल 80 सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की, लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे कि इन सीटों पर की। और जो रुझान में दिख रहा है वो वही परिलक्षित हो रहा है, हालांकि
0: उमेश
1: अभी
0: जी
1: ये
0: आपको
1: बड़ा शुरुआती है।
0: जी
1: जी
0: उमेश जी आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उससे सरकार को बंपर फायदा मिल रहा है। झारखंड में देखे तो हेमंत सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की, वहां पर वो जीते। छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिला, मध्य प्रदेश में भी लाभ मिला। यहां पर ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं, 1,000 रुपए मिलते हैं हर महीने। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगी 500 रुपए और बढ़ा देंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3,000 रुपए वो हर महीने हर महिला को देंगी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में?
1: अब बिल्कुल, जब कोई सरकार जीत बनाने की स्थिति में कोई पार्टी आती है और कोई सरकार हारती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर तो काम करते ही हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सरकार में रहता और जिन्होंने दे दिया, तो जनता और वोटर सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर जो रुझानों में दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, वैसा ही अगर ऐसा रहा, तो निश्चित तौर पर जो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, वहाँ ये जो ट्रेंड रहा है ना कि जो दे रहा है उसी पर ज़्यादा भरोसा है, तो उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन क्यों बदलाव आ रहा है, इसको भी हमें थोड़ा सा देखना और सोचना पड़ेगा। एक चीज है कि जैसे आरजी कर, अभी कुछ महीने पहले आप देखिए, अगस्त 2025 में जो आरजी कर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, और जिस पश्चिम बंगाल में एक सवाल तृणमूल की ओर से उठता रहा कि ऐसे तो बहुत सारे पूरे देश में होते रहे हैं, लेकिन जानते हैं उसका रिपरकर्शन क्या रहा? सरकार ने उसको जिस तरह से डील किया, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गुस्सा रहा, खासतौर पर वहां की महिलाओं में। और एक चीज आप देखेंगे कि जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग गए हैं पश्चिम बंगाल से, जो बाहर रह रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कुछ ना बदलाव तो वहां दिख रहा है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तीसरी चीज एक ये भी है कि SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो चला, पूरे देश में चल रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना। तो ये जो कंट्राडिक्शन ममता बनर्जी ने, हम लोग ये ब्रेक के पहले जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठ के मुद्दे को किसने उछाला था, तो ममता बनर्जी ने। और उसी घुसपैठ को लेकर के SIR से उन्होंने जोड़ दिया कि घुसपैठ की बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ के वासी हैं उनको नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया बहिर्गतों, पश्चिम बंगाल का समाज, जहां आप देखेंगे कि आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े धुरंधर वहीं से पैदा होते हैं, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव आप देखेंगे तो वहीं, वंदे मातरम का 150 साल अभी हाल ही में बीता है, पूरे देश ने जिसको गाया। तो वो जो चीजें थी, बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन मसलों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बनाया, और उसका असर ये जो रुझान है उसमें दिख रहा है।
2: So right, the BJP has kind of hit a half century when it comes to West Bengal, and now coming back to Tamil Nadu, Sanjeev Ji, TVK, the party, it's leading on 14 seats. The first time, you know, this party has come into existence, and 14 seats, the DMK on 16, which is minus 15 from the last time, and AIADMK almost the same, like 9 plus 1 from the last time. So how big a factor do you see TVK playing when it comes to Tamil Nadu this time, when it comes to the formation of the government?
0: टीवी के सर्टनली यू नो विजय विद यू नो ही इज बीन एन एक्टर एंड ही हैज

0: the fancy of the youth and the women in the state. So this time, since he's emerged very strong, and it's most likely that most of the parties like the Congress also tried earlier to ally with the TVK. So did the BJP, but Vijay decided to go it alone this time. So he's tried his time and tested his prowess on the ground. So every party will now try and, you know, ally with him in post-poll alliance. But it's likely that, you know, the southern parties generally go with the central government. So it's likely that the BJP may, you know, ally with it post-poll alliance.
1: So mostly the TVK will have to, or rather would be playing the kingmaker role, if not the king itself. Now, Umeshji, you know, coming to Assam now, in Assam as well, the BJP is kind of getting close to the half century mark. It's already on 49, and it's been like a clean sweep, just no contest at all when it comes to Assam.
2: It is on an expected line. यही उम्मीद की जा रही थी वहाँ कि इसी तरह से जीत हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को. और आप जानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अलग तरह के नेता हैं. आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बाहर के लोगों को वो नेतृत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक तरह से वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का चेहरा बन
1: चुके हैं. सुशील तिवारी फ्रॉम चेन्नई. सुशील जी, वेलकम.
3: Thank you so much.
1: Yeah, Sushil ji, yeah, please tell us the latest on the ground. What's happening there and how is the mood over there?
3: Actually, the mood is very energetic. We have just visited the nearby counting center, which is close to AIR, that is Queen Mary's College. So lots of police personnel are there. The quite tight security arrangements are there. But a major number of political workers are also standing to know the fate of their candidates, their party. As per the trends by Election Commission, the total trends are about 10 seats, five of which AIDMK is leading. TVK, the new entrant in the political arena of Tamil Nadu, is leading on three, and CPI and DMK are leading on one seat each.
4: जी बिल्कुल सुशील जी, पिछले कुछ समय में जब से ये चुनाव घोषित हुए और वहां पर लगातार जो विकास की चर्चा चल रही थी, और कहा जाता है कि तमिलनाडु में व्यक्ति प्रधान राजनीति है, तमिलनाडु के जो टीवी चैनल्स हैं जिस पर बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है स्टालिन की, उन्होंने भी बाकी दूसरे पार्टियों को बराबर कवरेज देने की शुरुआत की पिछले एक महीने में. और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि टीवी चैनल्स को लगने लगा है कि अब डीएमके के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और टीवीके के विजय पूरी तरह छा गए. शुरुआती रुझान में टीवीके काफी बढ़िया करती नजर आ रही है. जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई जब इस चुनाव को कवर करने के लिए आप तमिलनाडु के अलग अलग केंद्रों पर गए? तो
3: देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही इस बार निर्णायक साबित होने वाली है. हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 4,75,000 से कुछ 4,75,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इनमें जो एक बड़ी संख्या है, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष यानी जो नए वोटर हैं वो 14,00,000 के आसपास हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और एक बड़ी संख्या युवाओं की जो 19 से 29 साल के यानी जो युवा वर्ग है और जेंजी है, वो टोटल मिलाकर के 1,00,00,000 से ऊपर है. यानी 1/4 मतदाता ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रधान राजनीति में आसानी से प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे तो पूरी ही राजनीति उस पर रही है, लेकिन टीवीके का जो उदय है वो वास्तव में इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके किया गया है. तो जहां एक और डीएमके के पास अपनी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनका एक बेनिफिट था, उसका एक आत्मविश्वास था, उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में थे, वहीं इन युवा मतदाताओं के भरोसे विजय ने राजनीतिक मैदान में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की थी. तो ये इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा. अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो पोस्टल बैलेट्स होते हैं. तो धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होगी कुछ समय के बाद, तो हम देखेंगे कि जो युवा मतदाता है उन्होंने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए, या फिर जो लोक कल्याण की योजनाएं रहे उनका फायदा डीएमके को मिला, या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है उसका फायदा AIADMK और बीजेपी यानी एनडीए का जो अलायंस है उसने उठाने का कुछ प्रयास किया या उसे कुछ फायदा हुआ. जी
4: सुशील जी, जानकारी के लिए धन्यवाद. आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे. संजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
0: जी, मैं ये कह रहा था कि द्रविडियन पार्टीज जो 1957 में पहली बार डीएमके लड़ा,

0: 57 में लड़ा और 67 में पावर में आ गया। तो 67 में जैसे जब 67 में जब पावर में आया तो ये लगभग 60 साल के बाद आज अगर विजय की पार्टी अगर किंग मेकर बनती है या पावर में आती है तो एक तरह से इट विल बी सनसेट फॉर यू नो द द्रविड़ियन पार्टीज। और जैसे एआईएडीएमके भी डीएमके से निकल के बना तो ऑल्टरनेटिवली द्रविड़ियन कल्चर को तमिल कल्चर को तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से ये उभरा था, एजिटेशनल मूवमेंट से उभरा था। तो ये उस पार्टी का अंत होगा और एक बार फिर ये देखेंगे कि विजय के जो एक्टर रहे हैं पहले एमजी रामाचंद्रन जयललिता एक्टर्स हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन तमिलनाडु, तो एक तरह से उसकी रिटर्न होगी।
1: और आकाशवाणी के श्रोताओं, अगर आपकी दिलचस्पी कुछ वीआईपी सीट्स पर हैं तो हम आपको बता दें जो ताजा ट्रेंड्स चल रहे हैं। असम के रंगिया से भावेश कलीटा इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जो जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस समय बढ़त पर हैं, जबकि नलबाड़ी से जयंत इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जोरहट से, तो जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय आगे चल रहे हैं। गोलाघाट से अजंता नियोंग भी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। बोकाहाट से असम गण परिषद के अतुल बोरा भी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, इस समय चुनाव आयोग के पोर्टल के अनुसार भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वहां पर एआईएडीएमके के चेपॉक से अद्री राजम इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि चेपॉक थिरु वाली केनी से उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के बहुत बड़े नाम हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। एआईएडीएमके के लिए अन्ना नगर से एस गोकुल इंद्रा पीछे चल रहे हैं। साइदापेट से भी डीएमके के सुब्रमण्यन मां पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। अगर आप टीवी के चीफ विजय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपनी सीट से इस समय आगे चल रहे हैं।
2: Yeah, Umesh ji, talking of Tamil Nadu and the southern states in general, you know, the NDA or the BJP has been making its mark for quite some time now when it comes to Karnataka. But when it comes to Kerala or Tamil Nadu this time in particular, the BJP has been like trying for quite some time now, let's say for almost 8 to 10 years now, wherein they have kind of been pushing for that major push to either make some inroads or get a foothold into the Tamil Nadu politics. But this time as well, there was that concerted push by the BJP to make some kind of a strong, some kind of a foothold within the BJP politics. How do you see this turning out to be so far as the results or the trends rather for the moment, which we can see?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अब आप देखते देखिए, अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कोयम्बटूर से आते हैं, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बड़ा होजरी सेंटर है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है, खासतौर पर कपड़ा और होजरी का। तो वहां से आते हैं, वहां से वो 2 बार 1998 और 1999 में सांसद भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोशिश तो की। जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो कोयम्बटूर साउथ से विधायक भी रही हैं, तो इस बार वो चुनाव भी लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन भारत जो तमिलनाडु की राजनीति है, जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे, वहां अभी भी वो पुराने जो दो प्रतिद्वंदी रहे हैं, एआईडीएमके और डीएमके, खासतौर पर 1967 में जब से डीएमके का उभार होता है। और ये देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जिस कांग्रेस को उसने साफ किया, आज वही कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है और वो उसके पीछे उसकी छोटे भाई की तरह हर बार, एक चुनाव छोड़ दीजिए 1998 का, तो हर बार लगभग उसके
2: लेकिन
3: साथ
2: संजीव
3: रहती
2: जी,
3: है।
2: जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी, ये तो एक ट्रेंड बन गया है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तमिलनाडु की ये बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कई सारे तमाम राज्य ऐसे हैं
3: जी,
2: जहां पर कि ये
3: बिल्कुल
2: जो धूर विरोधी थे कांग्रेस।
3: बिल्कुल। तो तमिलनाडु में, और पिछली बार विधानसभा में 3% वोट, 2021 में भारतीय जनता पार्टी का अपने सवाल पूछा था, सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। तो अब केरल की बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और पिछली विधानसभा चुनाव में 15-16% वोट उसने हासिल किए थे। और इस बार वहां जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं, जिन्होंने फील्ड पर काम किया, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में

قد جاءكم بصيرة

0: be back.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
2: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से, एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
1: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: Welcome back to Akashvani's special program, Janadesh 2026, where we are discussing the trends and results coming in from the assembly elections that were held in four states and one union territory in the month of April. Once again, we have with us in studio senior journalist Umesh Chaturvedi and political analyst Ashok Tandon. And right at the beginning of this section of the program, let's give you the latest trends coming in.
3: Ji Anubha, aur sabse pehle agar hum Assam ke jo rujhan aa rahe hain un par nazar dalein to Assam mein Bharatiya Janata Party 126 seaton mein se 79 seaton par badhat banaye hue hai. असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे चल रही है, AIUDF 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सी

0: सीटों पर आगे है, और सीपीआई 12 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12 सीटों पर आगे चल रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 56 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है।
1: If we talk about Puducherry, then the AIADMK is leading on one. The ruling AINRC, which is part of the NDA alliance, is leading on 10 seats. BJP, part of the NDA alliance in Puducherry, is leading on 4 seats. DMK is leading on 4. Congress is leading on 7, and independents are ahead on 3 seats. And talking about Tamil Nadu, the AIADMK is leading on 64 seats. BJP, the AIADMK partner, is leading on 3 seats. The DMK, which was in government till, is the present government, is leading on 43. Its alliance partner, Congress, is leading on 5. IUML is leading on 1. Actor Vijay's TVK, which is being seen as the biggest disruptor in these elections in Tamil Nadu, is leading on 106 seats. And quickly, Vishal, why don't you give the.
0: जी, पश्चिम बंगाल के अगर हम रुझानों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, 286 सीटों के हमें जो हैं इस समय रुझान मिल रहे हैं, और 293 सीटों के लिए वहाँ पर गणना हो रही है, चुनाव वोटों की गिनती हो रही है, और AISF एक सीट पर आगे है, AITC 91 सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस।
1: जी, एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू चेन्नई फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश कुमार श्रीवास्तव इज ऑनलाइन विद अस. मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू आकाशवाणी जनदेश 2026.
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार सर. सर, दिस इज द फर्स्ट दीज इलेक्शंस. यू आर बेस्ड इन चेन्नई, यू यू नो कॉलिंग टॉकिंग टू अस फ्रॉम चेन्नई. व्हाट इज योर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु? वी जस्ट सेड सॉ दैट एक्टर विजयस टीवीके लीडिंग ऑन 106 सीट्स, अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज, बिकॉज इफ वी गो बाय द एग्जिट पोल्स, हार्डली एनीबडी हैड गिवन यू नो एनी क्रेडेंस टू टीवीके इमर्जिंग एज प्रोबेबली नॉट जस्ट किंग मेकर बट एज द नेक्स्ट फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट.
2: Yes, ma'am. Actually, the youth is with the TVK.
1: जी
2: That is the first thing that youth voters like from
1: जी सर
2: that college students and till 30 years age youth is with the TVK and that 30 year age number percentage of voters is more than near about 20% voters of Tamil Nadu is that is. Second thing, the Tamil Nadu public want to change the DMK AIADMK. They want the changing of that
1: राइट
2: दिस पैटर्न.
1: जी, तो आपको
2: थैंक्स.
1: जी विशाल
0: जी,
2: जी
0: कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि युवा जो हैं वो टीवीके के साथ जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या टीवीके में ऐसा क्या आकर्षण युवाओं को लगा कि वो टीवीके की तरफ खींचे चले गए वोटर के तौर पर?
2: एक तो जो इनका फैंस क्लब था, जो इन्होंने इनके फैंस थे, ये केवल अभी चुनाव में इस बार उतरे हैं, लेकिन इसकी तैयारी ये पिछले कई सालों से कर रहे थे, लोगों की मदद करना, और इन्होंने युवाओं को जोड़ रखा था. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि एक अभिनेता के
1: जी
2: रूप में जो
1: जी
2: विजय है
1: सतीश जी
2: वो
1: जी
2: कहीं ना
1: सतीश जी
2: कहीं इनकी एक था.
1: हाँ, मुझे आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा जुड़ गए हैं. मिस्टर नरसिम्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनदेश 2026.
3: नमस्कार जी.
1: नमस्ते सर. ये जो आप हम रुझान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए असम में ऑलमोस्ट अपनी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, और बाकी जगह भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नजर आ रहे हैं आपको?
3: बिल्कुल पूरी तरह बीजेपी के जो पूर्वानुमान था, जो लक्ष्य था, उसके अनुकूल आज के परिणाम सब लगभग सभी राज्यों में आ रहे हैं.
1: जी
3: ये उस असम में तीसरी बार हम और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही हमारा एक आकांक्षा थी, एक लक्ष्य था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है. और असम की जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे सरकार उनके उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए असम की जनता ने और बड़ी बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बना रहे हैं. और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपने सरकार अपने पूरी तरह अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। एक बड़ा राज्य होने के नाते पश्चिम बंगाल का देश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उनका स्थान है, और ऐसे राज्य में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल से आते हैं, और ऐसे राज्य में एक क्षेत्रीय दल के खिलाफ लड़ते हुए एक बड़े जीत को हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरह से टीएमसी के शासन से एक तरह से बहुत ही दुखी होकर, और वहाँ जिस प्रकार की करप्शन, भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी को चुना है, मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में बीजेपी को, यहाँ बीजेपी के सरकार बनाकर ही केवल विकास के रास्ते पर बंगाल आगे बढ़ सकती है। इसी आस्था के साथ, इसी विचार के साथ वहाँ की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जीत दिया है, ये उनके लिए धन्यवाद। और पुडुचेरी में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो यही हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है।
1: मिस्टर नरसिम्हा, इफ यू लुक एट द, यू नो, इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, बीजेपी ऑन इट्स ओन इज लीडिंग ऑन 3 seats, सेम वी सी दैट इन केरल बीजेपी इज अगेन लीडिंग ऑन 3 seats, वाइल इन पुदुचेरी इट्स लीडिंग ऑन 4 seats. सो ऑल्दो इट मे बी यू नो पार्ट ऑफ द अलायंस, हाउ डू यू सी दीज ट्रेंड्स दैट the BJP is you know has been making an effort to make expand its footprint, especially in Kerala and Tamil Nadu, the southern states? How do you see these trends coming in?
3: See, Kerala, this would be the first time that a BJP BJP would have its presence in the state assembly. You've seen how BJP formed, BJP won the local corporation elections in Trivandrum, Thiruvananthapuram, and BJP has been increasing its vote share election after election, but our attempt this time was to make a strong presence in the assembly, and that will make a foundation that will help us to form a foundation for future success for the BJP. So we are quite happy that BJP is leading in some seats, and we will also see a big rise in BJP vote share in Kerala, which should be a sort of a ladder for us to grow on our own in future. When it comes to Tamil Nadu, our main aim in Tamil Nadu was to defeat the DMK Congress combined, because this is it is the DMK which ran a lot of negative campaign against the BJP and the central government. They in fact tried to create an impression that BJP was anti-South by alleging that delimitation was going to be harmful for the for the southern states. So all this propaganda. For this propaganda, the BJP always wanted to defeat the DMK, and that was our primary aim, and that certainly is coming true in today's election results. But as we all see, the TVK, which came on the horizon as a new party, certainly has taken Tamil Nadu, has given a new alternative to the people of Tamil Nadu, and they have swung heavily in TVK's favor. So It appears to be hung assembly in Tamil Nadu for the last 3-4 hours. We see a hung assembly scenario. We'll see how it pans out, but it will certainly be an anti-DMK, anti-Congress government in Tamil Nadu, which is likely to be certainly pro-center and work towards realizing the dreams of Prime Minister Narendra Modi ji as far as development is concerned.
1: Mr. Narasimha, thank you so much for joining Akashwani.
3: Thank you, Ji.
1: That was BJP spokesperson GBL Narasimha.
0: जी अमीश चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, एक तरीके से पूरा बड़ा उलटफेर वहां पर देखने को मिला है, बिल्कुल एक राजनीति में ट्विस्ट एकदम से देखने को मिल रहा है वहां पर। टीवी के 105 सीटें पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है, और लगभग अब लगता है कि बहुमत की तरफ भी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी देखना होगा कि उसको कितनी सीटें और कहां पर अभी मिलती हैं। कुल मिलाकर के आप जो तमिलनाडु में ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है?
4: देखिए ये तो बता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक्टर को लेकर के फिल्मी जो दुनिया के लोग रहते हैं, जो सितारे रहे हैं, उनको लेकर के जो एक खास तौर का फैनेटिज्म दिखता रहा है, उसकी एक पुनरावृत्ति दिखती है। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहूँगा, थलपति विजय की

0: एक फिल्म रही है घीली, तमिल फिल्म है घीली, उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था, यह एरिया हो या वो एरिया, हर जगह का विजेता मैं ही हूँ। तमिलनाडु के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि वो हर जगह के विजेता हैं, हर तरफ के लोगों के उन्होंने एक तरह से लोगों को आकर्षित किया है, लोगों की बातों को रखा है, लोगों को उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है।
1: जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेन्नई से सतीश कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन जुड़े हैं। जी श्रीवास्तव जी, चेन्नई में आप हैं और इस समय वहां पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे, आप इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो टीवी के साथ जो है युवा मतदाता तमिलनाडु का, राज्य का, वो सबसे ज्यादा जुड़ा है जाकर के, और उसने अपील किया है युवा मतदाताओं को टीवी के पार्टी ने, या विजय ने, अभिनेता विजय जो हैं, जो उसके नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या सामने रखा वहां के मतदाताओं के सामने कि जो युवा मतदाता हैं उससे बहुत प्रभावित नजर आए?
0: सर, एक तो जो कहते हैं ना कि ये जो अभिनेता वाला फैक्टर है यहाँ तमिलनाडु में,
1: जी
0: ये तो है ही है। और उसके बाद ये इन्होंने कई जगह इनके जो फैंस क्लब इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पर, तो ये जो इनका फैंस क्लब है, ये जब ये अभी राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि तलपति विजय राजनीति करेंगे, उस समय भी इनका ये फैंस क्लब जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। और जो जो एक एक मैं पहले भी बताया कि ये डीएम के एआईडीएम के ये दोनों पार्टियां आ रही थी, जनता इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, तो इस तीसरे विकल्प का भी इनको फायदा मिला। और युवाओं के आकर्षण, एक जो अभिनय इनका था, अभिनेता के रूप में, युवाओं के रूप में, के बीच में ये उस समय भी लोकप्रिय थे जब अभी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही थी।
2: जी
0: एक एक प्रश्न पूछना चाहूंगा
2: सती,
0: कि इसमें रजनीकांत और कमल हासन, इन दोनों की क्या भूमिका रही इस चुनाव में?
2: सर, रजनीकांत और कमल हासन कि जो इसमें इन इन मतलब इनके साथ या इनके विपक्ष में वो नहीं रहे, वे साइलेंट रहे। वे जब राजनीति में आने के का जब उनका प्रयास शुरू हुआ, तो वो मतलब जो इनका काम राजनीति में आने के पहले जन सेवा का जो इनका कार्य था टीवी का, वह कार्य टीवी के का वह कार्य न तो रजनीकांत का था और ना कमल हासन का था, तो इसका भी इनको फायदा मिला, जनता भी इनसे जुड़ी, केवल युवा वर्ग तो इनके साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो जो उम्रदराज थे और उनके विचार में परिवर्तन आया।
3: मिस्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आकाशवाणी जनादेश 2026। Mr. Chandan, I want to come to you and I want to come back to Assam now. In Assam, we've seen for long years Badruddin Ajmal's AID, I beg your pardon, AIUDF, had been a very decisive force in Assam politics. But we saw in the 2024 elections, he himself lost his, constituency Dhubri by a very one of the biggest margins. Now he's contesting at the age of 76. He's contesting his very first, assembly election. Last assembly election, Assam, Tamil, I beg your pardon, Congress and AIUDF were together. This time they're, contesting separately. So has that also made an impact? Because the trends show us that AIUDF is leading only on two seats.
0: I think he himself is leading, if I'm not wrong. He himself is leading, but there was no alliance with the Congress.
3: Yes.
0: And there was no alliance actually led by Congress. There were no other smaller parties also in the. Congress wanted to revive its fortunes on its own. And they thought that Gaurav Gogoi, being a young, dynamic leader, may be able to turn the table. But unfortunately, it has not happened. But as far as this fringe group is concerned, no, they were actually trying to corner all the Muslim votes in Assam, and that has been a setback for the Congress for quite some time. So, but I think the factor which has weighed very heavily in favor of BJP and Hemanta Biswa Sarma is that their, call that they will not allow infiltration. They will in fact send back the Bangladeshi infiltrators And that, I think, is the core sentiment in Assam.

0: for a very long time, because Assam has been flooded with infiltration from Bangladesh, and many of them were not even a legitimate people coming into Assam. So all the infiltrators, so they will now be pushed back. That was one of the main agenda of Biswa Sarma. So let's see what happens. But I personally feel that the Congress needs to do some introspection in Assam. Ji, because it was a very powerful party in Assam earlier.
1: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, असम की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की बहुत बड़ी, भाजपा की बहुत बड़ी ताकत रही है महिला मतदाता है. और अरुणोदय एक योजना जो है भारतीय जनता पार्टी हिमंता सरकार ने वहां पर चलाई और महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे हैं. ये इसका असर भी आप देखते हैं चुनाव नतीजों पर?
2: बिल्कुल, ये तो हर जगह दिख रहा है. आप देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लड़की योजना, ये झारखंड में माई योजना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजना, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वो दे रही थी, लक्ष्मी क्या योजना, भाग्य नहीं, लक्ष्मी कुछ ऐसे दूसरा नाम है, तो उस योजना का. लेकिन एक चीज देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो करामात क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां आरजी कर के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का रवैया रहा उसको लेकर के महिलाओं में एक क्षोभ रहा और उसका असर दिख रहा है. लेकिन असम में ऐसा नहीं है. और दोनों राज्यों में एक चीज बार बार देखना चाहिए, घुसपैठ का मामला असम से उठता है. आप देखेंगे कि घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ा सवाल पहली बार असम में उठा था 1985 में. तो एक सरकार ही बनी थी असम गण परिषद, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो घुसपैठ के मामले पर ही उभरी थी और वो सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी. लेकिन वही मामला पश्चिम बंगाल में भी आया, और सिर्फ महिलाओं का मामला ही नहीं है, बाकी कई सारे मामले हैं. ठीक है कि वो एक मामला है, महिलाओं ने वोट डाला, लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 2021 के चुनाव में महिलाओं का 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ममता बनर्जी को मिला था. लेकिन इस बार जाहिर है कि वो महिलाओं ने साथ छोड़ दिया. उन्होंने जो लक्ष्मी योजना है जिसमें वो 1500 रुपए महीने दे रही हैं, और ये वादा भी किया था कि 500 रुपए और देंगी चुनाव जीतने के बाद, वो काम नहीं आया. तो महिलाओं का देखना ये है कि किन जगहों पर वो उनके साथ ये सहयोग कर रही हैं सरकारें या पार्टियां, और किस जगह पर वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये दोनों ही चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई. तो असम में उनकी सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए असम में तो कामयाब रहा, हेमंत बिस्व सरमा को समर्थन मिला. ममता बनर्जी को इसका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है. तो ये राज्यवार हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं.
0: जी, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल में बहुत जोर पकड़ गया था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो रेप विक्टिम की माँ है वो लीड कर

0: नजर से देखा जाता है, वहाँ दुर्गा की धरती है, शक्ति की धरती है। तो उस राज्य की महिलाओं ने इसे एक अलग ढंग से लिया, और ये शायद इसी वजह से उनकी लक्ष्मी योजना कामयाब नहीं रही। और असम में आप देखेंगे कि बार बार एग्रेसिव ढंग से हेमंत विश्व शर्मा
1: जी
0: घुसपैठ का मुद्दा उछालते हैं बार बार। यहाँ तक तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसी को रहने ही नहीं देंगे, घुसपैठिए को
1: बिल्कुल
0: बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, सिर्फ महिला योजना नहीं है, महिलाओं का साथ देना, सुरक्षा देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की 1500 या 2000 या 1500 रुपया देना। जी
1: जी। प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई, और उस इलाके में भाजपा जो है वहां चारों सीटों पर आगे चल रही है, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट करने का मतदाताओं से जो एक एक ये एक एक तरीका है, ये कितना असर करता है?
0: बिल्कुल। देखिए, गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, संचारक थे, बड़े ही रिसर्च होता रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसर्च नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी होना चाहिए, और एक उनकी टाइमिंग कि कब कैसे कनेक्ट करना है। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव होने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले यहीं इंडिया गेट पर दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खा करके एक तरह से पूरे बिहार को कनेक्ट कर लिया था। और जो लिट्टी चोखा नहीं खाता है, जो उसको पसंद भी नहीं करता था या जानता नहीं था, वो भी लिट्टी चोखा के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये कनेक्ट करने का उनका तरीका है। उन्होंने, आप देखिए, उस दिन उन्होंने एक बात भी बोली। वो पूछता है बाल जो झालमुड़ी बेचने वाला कि प्याज खाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता। तो वो भी एक बात थी, एक सीधे सीधे वो जनता के मर्म को छूने वाली बात थी। और उसके बाद ये देखिए कि सिर्फ झालमुड़ी ऐसा, ठीक है कि बंगाल जाने वाले सब लोग जानते हैं कि झालमुड़ी क्या होता है, लेकिन झालमुड़ी ने बंगाल के झालमुड़ी को ही नहीं बल्कि बंगाल के मर्म को छू दिया। और उस मर्म के जरिए उन्होंने एक तरह से बंगाल के दिलों में पैठ बना ली। तो एक तो रिसर्च ये होना ही चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेटर हैं, तो वो एक कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी ना कि ये जो लोग भाजपा वाले हैं वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि ये बात भी याद रखना चाहिए कि अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे, और उसकी शुरुआत उसी कलकत्ता में हुई थी, 30 मई 1826 को। और मतवाला एक बड़ा मशहूर पत्रिका होती थी, बड़ी मशहूर, वो भी उसी बंगाल से निकली। रामानंद दोषी जो बहुत बड़े मतलब विचारक थे बंगाल के, उन्होंने हिंदी में प्रवासी पत्रिका निकाली। तो ये कहना, सवाल ये नहीं है कि हिंदी में आप बात करके कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन। हम सब लोग यहाँ पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, चारों लोग बैठे हुए हैं, टंडन जी तो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ पत्रकार
1: जी
0: हैं। तो कनेक्ट करना होता है। अब वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस इलाके में कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, वहां
1: जी
0: लोगों को भोजपुरी से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंडी बोली से बोलते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी में बोलने लगते हैं, केरल में भी 4 शब्द मलयालम को बोल लेते हैं। तो वो एक उनका कनेक्ट करने का तरीका है, और ये नतीजे तो दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है।
1: अशोक जी, वुड यू लाइक टू एड समथिंग टू दिस, व्हाट अमरीश जस्ट सेड अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट्स, यू नो, डायरेक्टली विद द वोटर्स?
2: No doubt about it. He's a great communicator. But you know, sometime innovation is very important. No, I'll give you a very small example. Till he emerged on the political scene at the center, no party leader of any party was wearing the party badge on his jacket or shirt or coat. And not only that, he in fact told the party members that why the symbol of lotus is in saffron color, because on the EVM machine the lotus will be white. He started wearing the white lotus symbol on his jackets and all that.
1: Right.
2: No, these are very small things. Every lectern, wherever he used to address a public meeting, there used to be the symbol of the BJP. He invariably sits in the front seat of his car. The light on his head was always on, so that people could see him.
1: Right.
2: No, these are small, very little things in politics which do matter. Then not only the boat ride which he did, you know, around Howrah Bridge, then on, because when the campaigning ends, he went to Bellur Mat.
1: Yeah.
2: No, anybody could have gone there. Mamta could have gone, or anybody. No, his going to Bellur Mat was criticized. Why he is doing election politics and religion? But it was his, you know, innovative idea.
1: Right.
2: Hearing blessings from Bellur Mat, having a boat ride around the Howrah Bridge. So all these things are, and one thing I may tell you.
1: Yeah.
2: he himself is a lone

0: think tank. He is not going by any advisor. He does not have any think tank. He himself is the think tank.
1: Right.
0: About all these innovation which he does in politics is his own brainchild.
1: Right.
2: जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से आकाशवाणी समाचार ने विशेष बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी।
4: पहली बार जो है पश्चिम बंगाल की सरकार
3: ने नहीं, ये निरंतर तीन चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें। 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे, 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया, 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट। तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं।
4: कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या होगा?
3: मुझे लगता है कांग्रेस को आश्वस्तता के पैमाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने वहाँ बहुत शानदार काम किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, और उससे हम कह सकते हैं असम में जो हमें हैट्रिक मिली है ये पूर्वोत्तर की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व कार्य है।
1: और अब समय है एक रुझान, कुछ रुझान बताने का।
2: जी, प्रमुख उम्मीदवारों
1: जी विशाल,
2: प्रमुख उम्मीदवारों के सीट्स पर हम नजर डाल लें कि तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फिलहाल पीछे हो गए हैं, लेकिन नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं। पुदुचेरी में तट्टन चावड़ी सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार एन रंगासामी काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन मंगलम सीट पर वे पिछड़ रहे हैं।
1: Ashok ji, I'll draw your attention to what Sudhanshu Trivedi was, he said a lot of things, but he also mentioned the fact, he was talking about the organization, the BJP as a party's organization, it's, the way they approach things. So he talked about Home Minister Amit Shah's ranniti, ki unki ranniti bhi ek factor rahi. Aap uske baare mein kya kahenge, jis tarah se pura chunav ko unhone organize kiya hai?
0: Dekhiye, pichle कई चुनावों में, राज्यों के भी और लोकसभा के चुनावों में भी, हमारे पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि जब इनको मालूम है कि हम जीत रहे हैं तो फिर इतना जोर क्यों लगाते हैं।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में, एज वी से, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड।
1: एब्सोल्युटली,
0: आप हर तरह से अपना पूरा जोर लगाइए और उसके लिए योजना को ग्राउंड पर, जमीन पर उतारना है। तो जब योजना ड्राइंग बोर्ड पर बनती है तो उसको जमीन पर उतारने के लिए आपके पास जो है एक ऐसे लोग चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके। तो इस मामले में अमित शाह पूरी तरह से खरे उतरते हैं, वो हर चुनाव में जमीन पर उतरते हैं, स्वयं जा जाकर एक एक चीज, जिसको पन्ना प्रमुख और ये एक एक बूथ का हिसाब लेते हैं और स्वयं वहां पर बैठकर उसको योजना को कार्यान्वित करते। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हम ये और नहीं भूलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीचे की इकाई बना रखी है जिलों के उस स्तर पर, वो लगातार उसको एक तरह से सींचा भी जाता है। लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो पीछे रहकर जमीनी स्तर पर इसको एक तरह से ताकत देते हैं और ये लोग मानते भी हैं। और इस वजह से जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, बहुत पार्टियां उनके इस पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को कहीं इतनी इतनी बुरी तरह से पिछड़ जाती हैं, जैसे कांग्रेस हर चुनाव में इनकी सिस्टम से, इलेक्शनियरिंग से, कैंपेनिंग से, स्ट्रेटजी से बहुत दूर रहती है। लेकिन ममता बनर्जी के पास क्योंकि खुद की मशीनरी भी थी, स्ट्रेटजी भी रही है और वो सत्ता में भी रही हैं, तो वो इस बार भी एक डटकर मुकाबला करती हुई दिखाई दी है। लेकिन बाकी पार्टियां कहां गई बंगाल में? बंगाल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने, लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने पूरा मैदान छोड़ दिया और बंगाल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले कुछ थी ही नहीं, उसको आपने इतनी आगे बढ़ने दिया, तो ये सब पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीनरी है, जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हर कार्यकर्ताओं को लगाना है और राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को भेजना है, तो ये तो एक सीखने लायक चीज है जो बाकी दलों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ उसकी आलोचना करने से बात नहीं बढ़ेगी।
2: जी जी चतुर्वेदी जी, ये जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खासतौर पर कि भाजपा के राष्ट्रवाद को पश्चिम बंगाल की मतदाता ने स्वीकार लिया है इस बार और उस पर मोहर लगाई है, मूलतः जो हम अभी तक देखते आ रहे थे 2021 तक की जो मूलतः बांग्ला भाषी लोग थे, जो मारवाड़ी नहीं थे, जो बाहर से आकर नहीं बसे थे, उनका जुड़ाव इन चुनावों से पहले तक भाजपा के साथ पूरी तरीके से नहीं देखा जाता था, एक तरीके से बाहरी पार्टी की छवि थी भाजपा की वहां पर। तो जो बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उससे इस बार बांग्ला भाषी लोगों ने ज्यादा आइडेंटिफाई किया अपने आप को?
5: देखिए इसको ना थोड़ा सा और हम पीछे ले जाना चाहेंगे। ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसका गठन उन्होंने 1997 में किया था और 1998 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब टंडन जी भी सरकार में होते थे, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके पहले के चुनाव को आप देखेंगे, खासतौर पर राम मंदिर के आंदोलन के उभार के बाद, कोठारी बंधु जिनका बलिदान हुआ था राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में, तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की बात कर रहे हैं, 10% का 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है। आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे, 1999 में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से और शायद कृष्णानगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, दो लोग जीते थे। और एक चीज और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि ही रही है लड़ाका की, लड़ने वाले की। तो वो क्या करती थी कि जब समता पार्टी वाला मामला आया, तहलका वाला मामला आया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता चुन ली थी और उसके बाद वो सरकार से अलग हो गई थी। और एक चीज और भी है कि टंडन जी ज्यादा गहराई से बता पाएंगे, हम तो रिपोर्टर के नजरिए से देखे हैं कि तपन सिकदर जैसे वरिष्ठ नेता को ममता बनर्जी के दबाव में मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4% जो 2011 और उसके 2004 में या 9 में दिखती है 4% के आसपास, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही साथ रहा है। अब ममता बनर्जी का उभार भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होता है। आप देखिए कि बलबीर पूंजी का एक राज्यसभा में दिया हुआ भाषण याद आता है, उन्होंने कहा था कि हमारी ममता दी तो साक्षात दुर्गा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है जब 2011 में सत्ता पाती हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं, वैसे तो साथ छोड़ना और लेना उनका चलता रहा है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक को खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और आप देखिए कि 2016 में उभरना शुरू करती है और 2019 में तो उसने लोकसभा चुनाव में जो किया था, आप देखिए 18 लोकसभा सीटें जीत लेना, ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता है। तो ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार वहां आ रहा है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल ने 1991-92-98 में भी देखा था, समझा था, पकड़ा था। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 1967 में जो विपक्षी दलों की कांग्रेस के खिलाफ जो गोलबंदी हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल चुनाव जीते थे, रिजर्व सीट थी। तो ये ठीक है कि सत्ता में पहली बार आ रही है।
0: जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दर्शक, हमारे श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि ममता बनर्जी का इमर्जेंस कैसे हुआ। ममता बनर्जी, सौगत राय, दास मुंशी, ये कांग्रेस के यंग टर्क्स हुआ करते थे और ये कांग्रेस के गढ़ को वहां मजबूती से संभाले हुए थे, हावड़ा हो, कलकत्ता हो या। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में कांग्रेस सरकार जब से वाम दलों के ऊपर निर्भर रहने लगी और विशेष तौर से नरसिम्हा राव के समय पर, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। आप हमको पश्चिमी बंगाल में तो वाम मोर्चे से लड़ने को बोलते हो, केंद्र में आप उनके साथ सरकार बनाकर चलते हो, तो ममता बनर्जी ने उस समय एक लीड रोल लिया कि आप तय करो कि या तो आप वाम दलों के साथ सहयोग करोगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे वाम दलों के साथ। इस पर नरसिम्हा राव और कांग्रेस की मजबूरी रही, बाद में भी हमने देखा यूपीए के समय भी मजबूरी रही। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर, देखिए उन्होंने नाम क्या दिया कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस, अंग्रेजी में इसको ग्रास रूट लेवल कांग्रेस कहते हैं, और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली वो नेत्री थी। और धीरे धीरे पहले तो वो कांग्रेस का ही वोट बैंक खा गई, फिर वो लड़ी वाम दलों से, वाम मोर्चे से लड़ाई करते करते उन्होंने वाम मोर्चे को भी समाप्त किया, लेकिन खाली जगह तो रह नहीं सकती थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो धीरे धीरे वहां पर विकल्प के तौर पर उभरी और आज उसने तृणमूल कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर कर दिया।
1: And now time for some results, Justin. So we have two results coming in from the assembly by-elections. Seven assembly by-elections were also held along with the state assembly elections. And the two results that have come in have both gone in favor of Bharatiya Janata Party. In Nagaland, in the Koridang assembly seat, Bharatiya Janata Party's Dao chair Im Chen has won. Whereas in Tripura, again, BJP's candidate Jahar Chakraborty has won from Dharamnagar. So both the seats gone to Bharatiya Janata Party from the by-elections that were held. And now let's go straight to Kolkata, where Akashwani correspondent Sandeepan Das Gupta is with us. Sandeepan, welcome to the program. What can you Thank tell you. Us about what is Thank the latest you. Happening there in Bengal? Very clearly, BJP on its way to form the first government ever in the state at what is the latest that you have?
6: BJP is hopeful to form the government in West Bengal. Till now, as per the information, BJP is living in 190 constituencies, whereas Mamata Banerjee, interestingly, is living in Bhavanipur by around 20,000 votes, whereas Shubhendu Adhikari is living in Nandigram.
1: Yes.
6: And many other stalwarts, I would say, like Adit Chaudhary, he is failing. People expected that he will win from Barhampur constituency, but he is trailing. Whereas Aam Janata Unnayan Party leader Humayun Kabir, who was expelled from TMC, he is leading by almost 45,000 votes. So this is the thing which is going on here. But the other thing is that till now, which is very interesting, Mamata Banerjee has expressed confidence that they will form the government in spite of this sweeping result which has come till now. That around 190 constituency BJP is leading.
1: Right.
6: Till now, Mamata is saying that she will win the election and form the government. Because what she is saying that till now only 5 to 6 rounds counting has been done. And there are more counting which is coming and which the entire result will change. And that is the thing. And Shubhendu Adhikari has also expressed confidence that BJP will form the government in West Bengal.
1: Right.
0: Can we ask him a question?
1: Yes, please, Mr. Katanda.
0: Do you think this Humayun Kabir factor has been able to split the Muslim votes, which was earlier almost united and behind Mamata Banerjee? Can we say that?
6: Yes. Humayun Kabir factor is really a very big factor because it has split the Muslim vote. Because it was what happened last time when Mamata won the election. At that time, the entire Muslim vote went in favor of Mamata. But now it has split because CPM, Congress, and this Humayun Kabir factor, they have taken away a chunk from that vote. So that has really made a difference. And CPM also. CPM also has done a good, they have got good number of votes. That is also a factor for this debacle for Trinamool Congress.
1: Sandeepan Das Gupta, thank you so much for joining us on the program.
6: Thank you.
1: And thank you. Just in.
2: जी, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के ताज़ा रुझान हमारे सामने हैं। 30 सीटों के रुझान हमें अभी तक मिले हैं और कुछ सीटों पर परिणाम भी मिलने लगे हैं। अब तक 3 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं, एक सीट AINRC, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट DMK के खाते में गई है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
1: Ashok ji, I want to get back to you. What we just heard our, you know, correspondent was saying.

0: ले 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है। क्या कहना है आपका?
1: जी, आप वैसे ही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहां पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहां पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से
0: जबकि
1: वहां
0: उन्होंने
1: पे।
0: कहा
1: हाँ,
0: था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये
1: और हम अगर
0: बताइए।
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर जो अखिल गोगोई, वो मार्जिनली भी आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोदोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए। बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं मीराबो ठाकुर
0: धन्यवाद,
1: जो
0: धन्यवाद
1: कांग्रेस के।
0: राकेश। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक तो इनके यहाँ परिवारवाद चला, करुणानिधि
1: जी
0: ने स्टालिन जी को, स्टालिन जी ने उदयनिधि स्टालिन जी को अपनी पार्टी का प्रमुख बनाने का प्रयास किया, उसका भी था। और डीएमके की जो हिंदू विरोधी छवि निकल करके आ रही थी, वो सीधे सीधे जो बोल रहे थे, उसका भी प्रभाव पड़ा। और डीएमके ने जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें कई वादे वो जो हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में पूरा करना शुरू किए।
1: जी
0: तो इसका भी जनता, जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है कि आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप, अब इनको याद आया 3-4 महीना पहले कि नहीं, हमने हमको विद्यार्थियों को लैपटॉप देना है, उसके पहले ये शांत शांत पड़े हुए थे। तो ये कई चीजें थी। और उसी में वहां पे ये पिछले 2 सालों से जो इनकी पार्टी थी, वो जगह जगह जमीनी स्तर पे जाके काम कर रही थी। और जो इनका अभिनेता अभिनेता की छवि थी समाज के बीच में, वो तो थी ही। युवा वर्ग जो कि 20% मतदाता है,
1: जी
0: वो तो सीधे तौर पर विजय को देख रहा था।
1: जी
2: जी धन्यवाद सतीश जी। एनके सिंह जी, तमिलनाडु के जो हम नतीजे अब देख रहे हैं, और जिस तरीके से टीवीके ने एक तरह से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उत्तरी पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम, और ये जो प्रदर्शन है टीवीके का, क्या ऐसी क्या इन्होंने मतदाताओं के सामने क्या विचारधारा अपनी रखी, इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा जो कि मतदाता खींचे चले गए?
3: देखिए, ट्रेडिशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये एक फ्रेम बनाते हैं कि ये विचारधारा इसकी क्या रही होगी, भाजपा की ये है, कांग्रेस। मतदाता जरूरी नहीं कि इन चीज़ों से मुतासिर बहुत ज़्यादा होता हो आज का मतदाता। और तमिलनाडु का तो कल्चर रहा है कि फिल्म वर्ल्ड से आए लोग, आप देखते होंगे कि
1: जी
3: कई बार अगर फिल्म की दुनिया का कोई मर जाता है तो दस
1: मंदिर,
3: बीस लोग सुसाइड कर लेते हैं,
1: मंदिर बनते हैं
3: कुछ लोग
1: वहां।
3: मंदिर बनवा देते
1: जी
3: हैं। तो वहां पे पेंचेंट फॉर हीरोज,
1: या
3: फिल्म हीरोज, ये कुछ अजीब सा है जो कि बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे है। तो अगर आप देख रहे हैं कि विजयन अचानक 2 साल में ये मेटियोरिक राइज होता है और इलेक्शन स्केल पे वो क्वांटम जंप लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जनता का आशीर्वाद उनको उनके फिल्म का जो पास्ट है। आप देखें तमिलनाडु की सारी पार्टियां, जयललिता का मुझे याद है, जब जयललिता को करप्शन चार्जेस में जेल किया गया
1: जी
3: तो अगले इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया।
1: जी
3: तो ये अजीब राज्य है जहां अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बेहद पैरामाउंट है, इतनी पैरामाउंट है कि लिंग्विस्टिक आधार पे, इसके अलावा जो उनका अपना कल्चर है उसके आधार पे ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को वहां पे एक्सपेंशन में दिक्कत आती
1: जी
3: है। जहां जहां भी कल्चरल स्ट्रांग कल्चरल आइडेंटिटीज है वहां पे आपको दिक्कत आएगी,
1: जी
3: तो बीजेपी को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जो इनका राइज है ये बताता है कि नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग तमिलनाडु में कुछ अलग होता है।
1: जी बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू नो यू रेज दैट बीजेपी, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी मिस्टर सिंह दैट यू नो वी सीइंग ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, वी ऑल्सो सी कांग्रेस। नाउ बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ आर नेशनल पार्टीज। BJP is, of course, you know, out of 20, 31 states and territories, it's already, you know, ruling in 21. So it's, and still we see that, you know, it's still trying to make footprints, it's still trying to make inroads in a state like Tamil Nadu and Kerala. Particularly about Tamil Nadu, even if, you know, the present government, DMK, seems to be on the way out and a new outfit, a new party, which is actor Vijay's TVK, is on the way in. But it's still a regional party. So we still see that the national parties, BJP and the Congress, are still not, you know, being able to get there, you know, get a foot in, so to speak. In not, I wouldn't say that they have not been able to get a foot in, but they're still trying to, you know, make a space for themselves. So it's still the regional parties which are ruling the roost. Mr. Tandon, what would you say?
4: Now, if we are talking about Tamil Nadu, as I said earlier, since independent, Congress was the dominant party
1: yes.
4: in Tamil Nadu. If I may say, perhaps it was the only party in politics. It produced Kamraj. But then once they aligned with a regional party, that started the downfall of the Congress in Tamil Nadu. And it led to literally wiping out. And now they are a very junior partner of the DMK in this particular election and in the earlier elections also. So the blame really lies on the national party like Congress. Why did they? See, just

0: why the defeat? They aligned with the regional party. And then they literally helped the regional party to grow. I mean, if there is one regional party, then obviously another regional party will come up. And that is the history of the Tamil Nadu politics. And as I fully agree with N.K. Singh, that the film stars had a very important role in the Tamil Nadu politics. But I also agree with him that even the regional the film stars, they have confined Tamil Nadu politics to regionalism.
1: Right.
0: It's still dominated by regional politics, whether it is DMK, AIADMK, or now actor Vijay's party. So therefore, regionalism has got very deep root into the Tamil Nadu politics, and the blame squarely lies with the national party. And the new party, BJP, which has been trying for the last quite some time, they have their own compulsions and problems. But the fact remains that Tamil Nadu is very well entrenched still with the regionalism.
1: Mr. Singh, what would you add to that? Like I was saying, that
2: I fully agree with the Ashokji. The fact is that BJP's inroad in all these new domains. Why BJP is succeeding but Congress isn't, but rather it is giving up their territory to some regional forces or BJP.
1: Right.
2: Why? Because Congress has virtually given a walkover in most of these elections. Where do you find a Congress leader fighting with the same zeal which Narendra Modi, the Prime Minister, is showing?
1: Right.
2: Notwithstanding all the handicaps, even as a Prime Minister, he has so many work.
1: Yeah.
2: Still, he will be in Bengal and his presence remains conspicuous all through. With new kabhi jhalmuri, sometimes something different.
1: Yeah.
2: And when there was an election, he was worshipping Durga at one place.
1: Yeah.
2: So you can imagine the scientific way in which the BJP is influencing masses.
1: Right.
2: That is one. And then the stock premise that we have to delve into is not this, that why BJP is expanding.
1: Mm-hmm.
2: Why Congress has given up?
1: Right.
2: That is one question. And if BJP is giving, just by saying that no, it is identity politics, we cannot solve this riddle. The riddle is that why people are getting influenced by BJP in comparison to other development parameters.
1: Yeah.
2: Not with, you can see Kerala. Mm-hmm. Kerala is the best on the human development index, all indices. But still, BJP is backing inroads. So much so that, the recent development is that even Communist Party, the then ruling party, now
1: CPM.
2: It is CPM, LDF is organizing the religious functions.
1: Yes.
2: So why is it happening? Because BJP has forced them to fall in line and toe the same line which BJP does.
1: Right.
2: So these are the factors one has to take into consideration while analyzing the development.
1: Right.
3: और अब हमें चुनावों के नतीजे भी मिलने लगे हैं मतगणना के और पुदुचेरी से हमारे पास नतीजे आ रहे हैं पुदुचेरी के जो रुझान हैं और नतीजे हमारे पास हैं पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया गया था और अभी जो ताज़ा नतीजे और रुझान हैं वो हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 4 सीटें मिल चुकी हैं 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में और 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी 1 पर बढ़त बनाए हुए है 1 पर आगे चल रही है और 1 सीट उसने भारतीय जनता पार्टी ने भी पुदुचेरी में जीत ली है अपने नाम कर ली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई है और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम एडीएमके को भी 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली है
1: एंड अनदर रिजल्ट कमिंग इन the result has come in from Assam, where the Congress leader, the face of Congress in this elections, Gaurav Gogoi, has lost from the Jorhat assembly seat. In fact, it is a seat where he had won the 2024 assembly. I beg your pardon, the 2024 Lok Sabha elections. Vishal.
3: और केरलम से भी हमारे पास ताज़ा रुझान आए हैं केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं 2 सीट कांग्रेस को गई हैं और 1 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है ये गठबंधन 103 सीटों पर आगे है, एलडीएफ 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है.
1: एंड ऑफ द टू सीट्स दैट द कांग्रेस हैज वन इन केरलम, लेट मी गिव यू द रिजल्ट्स फॉर दोस. दोस टू सीट्स आर थ्रिसूर, वेयर इट्स कैंडिडेट राजन जे पल्लन हैज वन बाय अ मार्जिन ऑफ ओवर 26,000 वोट्स. एंड द अदर सीट वेयर द कांग्रेस कैंडिडेट हैज वन इज हरिपद, वेयर रमेश चेन्नीतला हैज वन बाय more than 23,300 votes. So those are the results that we have right now.
3: जी एन के सिंह जी, केरलम की बात करें तो जो यू एल डी एफ है वो 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन इस बार निर्णायक बढ़त बना ली है इस बार उसने और 103 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है. एल डी एफ का पिछड़ना केरलम में एक तरीके से जो वाम राजनीति देश की थी उसमें एक आखिरी किला केरलम माना जाता था. अब ये नतीजे क्या बता रहे हैं कि वाम राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में?
2: देखिए, एक बात तो है कि वाम आदर्श जो आइडियोलॉजिकल इसके बोरिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं करेंगे. वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वाम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए फेल हुआ कि भारत आइडेंटिटी ग्रुप्स में बटा हुआ है और जब जब कोशिश की कि नहीं ब्रॉडर गरीबों का एक आइडेंटिटी वो बनाए जिसमें शोषित हों, एक्सप्लॉयटेड हों, प्रोलेटेरिएट हों, ये हो नहीं पाया क्योंकि वो फिर वापस जाति में चला जाता था, धर्म में चला जाता था. तो आइडियोलॉजी फेल हो गई, इसमें कोई दौरा नहीं, इंडिया में इलेक्टोरली फेल हो गई लेकिन आइडियोलॉजी तो रहेगी. हाँ, यहाँ पे है तो ये तो केरल में आप जानते ही हैं कि वो अल्टरनेट करते हैं, आज यहाँ है, आज उन्होंने कांग्रेस को दिया है, अगली बार वो फिर लेफ्ट को देंगे. तो ये अल्टरनेट कर, उनके पास विकल्प है और दोनों गवर्नमेंट्स फेयरली ओके करती है. पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो वहाँ बहुत ही स्मूथ चलती हैं और वेलफेयर की स्कीम सारी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होती है. मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं केरल के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखता हूँ तो ताजुब होता है. इवन जुडिशियल प्रोसेस आप देखें तो वहां पे अगर किसी को चार्जशीट कर दिया गया है तो 91% केसेस में उसका कन्विक्शन सर्टेन है
1: जी.
2: जबकि बिहार में इसके ठीक उल्टा है, सिर्फ 8% रेट ऑफ कन्विक्शन या 11% होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं. तो क्वालिटेटिव आप देखें ज्यूरिसप्रूडेंस के भी स्तर पे तो मुझे लगता है केरला बेस्ट गवर्न है और ये अल्टरनेट एक विकल्प है तो करते हैं, बाइपोलर सिस्टम है. हाँ, जब बीजेपी इसमें चली जाएगी, जब बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये ट्राइपोलर हो जाएगा और आप जानते हैं कि वहां पे 3 समूह हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड
1: मल, जो हिंदू मलयाली पॉपुलेशन
2: जी, और ये एक ही पोस्ट डाल है, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एजवाज है, मुस्लिम्स है, तो जिसे कांग्रेस को ब्रांड किया गया आपकी बार की ये मुस्लिम्स पार्टी है, विच वॉज नॉट द केस क्योंकि कांग्रेस को इसे आप देख रही है कि वोट मिला है, सबका मिला है. तो मुझे लगता है कि ये कहना, और कांग्रेस इस वजह से नहीं जीत रही है वहां पे कि कोई यहाँ पे से केंद्र में बैठा मेहनत कर रहा है
1: जी,
2: वो वहां पे कांग्रेस का अपना वजन है, अपना स्ट्रक्चर है
1: जी,
2: जिसकी वजह से जीत रही. तो मुझे लगता है कि कुल मिला के देखें तो केरल एक डिफरेंट स्टेट है और वेरी वेल गवर्न्ड स्टेट है, वहां की मैच्योरिटी समझ में आ रही है
1: जी. एंड लेट्स गेट बैक टू गुवाहाटी वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमृता मधु कैवल्या इज विद अस. अमृता, अर्लियर यू नो आई वाज टॉकिंग टू यू एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गौरव गोगोई एंड नाउ द रिजल्ट हैज कम इन. गौरव गोगोई हैज लॉस्ट द जोरहाट असेंबली सीट टू हिज बीजेपी राइवल. What were the factors for his? Because, the Jorhat seat as it is, the sitting MLA was from BJP. But the fact that he had won the bigger, the Lok Sabha constituency, and yet he has lost the assembly constituency in the same segment.
4: I think initially just looking at, I don't know the numbers, exact numbers, and I don't know how the numbers are stacked against Gaurav, but and which areas have not voted for him.
1: Mm-hmm.
4: But I must tell you that Hiten Goswami, his rival, is an old BJP hand.
1: Yes.
4: He is not a new face and he's been in that area. I have roots in Jorhat and mm-hmm. I have family in Jorhat and I know that Hiten Goswami is very, he's very popular, he's very liked simply because of the fact that he's there for people. He's there with people. If there is a small function somewhere, you see Hiten Goswami being around with his presence. I think people were expecting Gaurav to win this seat because His father has been one of the promised leaders, political leaders of the state, and he hails from that area.
1: Yeah.
4: But Gaurav also has not been particularly present in the constituency much, because he has to deal with his duties as the deputy Lok Sabha leader of the Congress of the Congress. I think that's also one thing that has really worked against him.
1: Mm-hmm.
4: And the other, I would imagine, is that I think the delimitation of the seat, you know, that has also played a part.
1: Okay.
4: And this is Gaurav's first assembly election.
1: Yes, yes.
4: And I think what really, shows that, I think being present there and being around for the people, I think, is a huge, would have made a huge difference for him.
1: Right. And now...
3: जी हमारे दीपेंद्र संवाददाता भाजपा मुख्यालय से इस समय जुड़ गए हैं जी दीपेंद्र
5: जी
3: हाँ दीपेंद्र इस समय आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं किस तरीके का उत्साह आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं
5: जी बिल्कुल जिस तरह से असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल शुरू हो चुका है जो कार्यकर्ता है हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आतिशबाजी हो रही थी और ढोल नगाड़े की धुन पर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता जो है कई लोगों से हमने बात की उनका कहना है कि यह जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जो जनता का भरोसा है ये उसकी जीत है और क्योंकि आपको बता दूं कि शाम में जो है प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनका आभार जताएंगे जी
1: जी दीपेंद्र इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आई विल गेट बैक टू आर यू नो आर पैनलिस्ट इन द स्टूडियो वी टॉकिंग अबाउट असम एंड वी जस्ट वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट गौरव गोगोई द फेस ऑफ कांग्रेस हैज लॉस्ट इन जो हिज द जोरहाट असेंबली सीट एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट बीजेपी ऑन इट्स ओन दिस टाइम हैज मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी ऑन इट्स ओन इन असम ऑन इट्स वे टू बिकम यू नो मेक अ गवर्नमेंट फॉर द थर्ड टाइम इट्स ऑन अ हैट्रिक सो वॉट डज इट से अबाउट द ऑपोजिशन in Assam Assembly seat, because Congress, as we see that at the moment, I can see the trends that are coming in, Congress is leading on 25 or probably 24 seats. So what does it say about the opposition in the party, Mr. Ashok Tandon?
0: No, as we know, Congress has been ruling Assam for a very long time, and BJP was a very late comer into the Assam politics. But gradually, the Congress started losing ground. They had stalwarts in the past, but I don't know. I think I would blame the central leadership of the Congress as far as failure in Assam is concerned.
1: Okay.
0: They were not really genuinely contesting the Assam election. Otherwise, I think, if I'm not wrong, Rahul Gandhi made only one trip to Assam. So they had not put all their guns blazing in Assam, and the leader who was their deputy leader in Lok Sabha, Gaurav Gogoi.
1: Yes.
0: So they fielded him, as your correspondent was saying, that people were perhaps confused whether he wants to remain the Lok Sabha member or he wants to come here in the process, you know, when you are trying to ride two boats. So that was perhaps one reason. And in the absence of stalwarts like earlier, Tarun Gogoi and others, they have not been able to develop a new leader.
1: Right.
0: The only leadership which has emerged is Gaurav Gogoi, and he won the Lok Sabha election, and he was performing well in Lok Sabha. Mm-hmm. He was deputy leader also.
1: Yeah.
0: But then you relying on him to win assembly was perhaps, I think...
1: It also shows that at a state level, the party doesn't have... You do not have any, you know, strong leaders or faces that you can promote.
0: Plus, also, the central leadership was not very seriously contested in the Assam election.
1: Okay.
0: I may be wrong, but I'm guessing can...
2: No. Ashok is 100% correct, but I will add to that.
1: Yeah.
2: You see, in so many states, you will find BJP doesn't have a leader.
1: Yeah.
2: But still, why BJP is wrong for me? Why this this kind of catchment area that BJP completely owns? The reason is that its leader does it. Does the rest of the work.
1: He leads from
2: all
1: the front.
2: Through. I mean, continuously.
1: Yeah.
2: Which is not the case with the Congress.
1: Right.
2: Had Rahul Gandhi, whoever they are, I mean, it's Nehru family. But even if at that juncture, he had continuously done what Ashokji is saying, that the absence of the national leader would

0: determine as to whether people should vote or not.
1: Right.
0: And that is what is happening.
1: Right.
2: जी गौरव भाटिया को सुनते हैं, उन्होंने कुछ कहा है पार्टी की जीत पर और चुनाव नतीजों पर, क्या कहा है ये सुनते हैं।
3: People of West Bengal wanted a change, a positive change which can create Sonar Bangla, and they see that change coming under the leadership of Shri Narendra Modi. Second reason, the appeasement politics of Mamata Banerjee has been rejected. This country belongs to everyone, and the majority, the Hindu class, cannot be treated like a second-grade citizen. Third, women empowerment. This has to come. And the Bharatiya Janata Party government will ensure that in West Bengal, Mamata Banerjee, being a female, was seen standing with goons of TMC who were targeting females and violating their dignity.
2: जी एन के सिंह जी, सोनार बांग्ला जो अभी उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने मिस्टर भाटिया ने, कि सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव था भाजपा ने रखा वहां पर, और तुष्टिकरण की राजनीति जो वहां पे बांग्ला पश्चिम बंगाल में होती रही, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भाजपा ने सवाल उठाए और उन्होंने बताया भी, तो क्या आपको ये जो बातें इन्होंने बताई भाटिया जी ने कही कि जीत का कारण है, क्या इससे आगे भी कुछ और आपको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे इससे आगे भी कुछ और है?
0: देखिए, सवाल थोड़ा डीप, इसका एनालिसिस की जरूरत है। डेमोक्रेसी एक वादा करता है, और हमारा संविधान, संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है, वो वादा करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। क्या आज एक अफसर, एक मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो उस काउंट पे आप फेल रहे 70 साल से? आखिर जनता को क्या वजह है कि वो हिंदू मुसलमान, चाहे यादव ठाकुर राजपूत ब्राह्मण, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी ग्रुप्स में क्यों जा रही है? जब इसको एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में जो किरदार थे वो लोग फेल हो गए वो डिलीवर करने में, तो मजबूरन उसको वापस, आप देखें कि सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे जब जयप्रकाश के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सारे लोग उभरते हैं। क्या वो डिलीवर कर पाए? अगर नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी एक ब्रॉडर कैनवास लेके आ रही है, और वो अपने, क्योंकि अभी देखा आपने गौरव भाटिया ने फिर वापस आ गए, बोले कि हिंदुओं को इस तरह दबने नहीं देंगे,
1: जी, जी।
0: वो कहा ना, तो अंत में आके यहां पे रुकता है, और तब हम रेशनल जो थिंकिंग होती है उसकी जगह हम अपने पहचान समूह के साथ रहते, वो हमें ज्यादा सुरक्षा देता है, ये हमारा मानना हो जाता है। तो हमें लगता है कि इसकी डीप एनालिसिस की जरूरत है कि बीजेपी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है और कांग्रेस क्यों वो ग्राउंड्स देती जा रही है बीजेपी को। उसकी वजह यह कि लीडरशिप में वो शिद्दत से लड़ने का जज्बा नहीं है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के पास है।
1: जी, एंड now BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi has joined us. Mr. Trivedi, welcome to Akashvani.
4: Hello.
1: Ji, Akashvani ke Janadesh 2026 mein aapka swagat hai.
4: Ji.
1: Sudhanshu ji, abhi jo natije aa rahe hain bhajpa ke liye to bahut hi zyada aashavan, bahut hi badhiya natije aa rahe hain, is bare mein aap kya kahenge?
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठकर अब ज्वार से सुनामी का रूप धारण कर रही, और ये एक ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय है। और आसाम में हमने शानदार सफलता हासिल की, हम 100 सीटों के आसपास आ रहे हैं, जो अभूतपूर्व है। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी, और पश्चिम बंगाल में हमारा नेतृत्व, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता के चलते हुए संगठन की गतिशीलता, अमित शाह जी की रणनीति, और सबसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी आज वो काम कर रही है जो मात्र 15 साल पहले कल्पना से परे माना जाता था।
1: जी,
4: बंगाल में हम 2011 में अप्रासंगिक दल से 2016 में 3 सीटें 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट, आसाम में हम 2011 में केवल 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कड़ी मेहनत, अच्छी नीति और कुशल नेतृत्व के द्वारा क्या अचीव किया जा सकता है, वो दिखाई पड़ रहा है।
1: जी, और एक जो हमेशा एक भाजपा का जो एक नैरेटिव है कि डबल इंजन की सरकार, आप जो केंद्र में हमेशा हम चुनावों में देखते हैं कि जो भाजपा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आपके नेता भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का सीधे सीधे फायदा राज्यों को भी होगा।
4: बंगाल में पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है, तो निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में विकास की दिशा में दिखाई पड़ेगा।
1: जी, सुधांशु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सो व्हाट आई वाज आस्किंग मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर टंडन, आई विल आस्क यू आल्सो, द प्राइम मिनिस्टर

0: And all the BJP leaders, when they go out campaigning, they've been talking about, they've been emphasizing the fact, and you know, that why people should vote for BJP, because it gives them the advantage of a double engine government. So it seems to be, you know, I am not sure, but do you think that that's also one of the reasons that we're seeing this kind of, especially in West Bengal, and the way the BJP has, the sweep the BJP seems to be making in the state?
1: I think the double engine government comes later. Mm-hmm. Initially, if I'm not wrong, before the West Bengal election, maybe about 6-7 months ago, the journalists were talking whether BJP has got enough candidates to be fielded.
0: Okay.
1: Fielding 293 candidates was a huge, big task before BJP. And I may be wrong, but the leader of BJP in West Bengal is really not a very stalwart. And in spite of that, the BJP strategy, the electioneering, the campaigning style, and the ground level work, I think that was one of the reasons why they got into a contest with Trinamool Congress.
0: Right.
1: And once they were in the fray, and I have always been saying, where is the left front? What is the Congress doing in West Bengal? So you made it a two-party contest. And then whenever there is anti-incumbency against the incumbent government, obviously somebody has to fill in.
0: Right.
1: And there is where the BJP came in, and they have proved. And plus the machinery and the leadership quality, I must say, that all has put BJP into the saddle in West Bengal.
0: Right. And so now it's time for us. We will be going into a break for our bulletins in a very little time. So before we do that, let's give you the latest trends and results coming in from the states and Union Territory. In Tamil Nadu, the actor Vijay led TVK is leading on 109 seats. AIADMK is leading on 57 seats. Its partner BJP is leading on one seat, whereas the DMK is leading on 49 seats. Vishal.
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है. तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और इसके अलावा सीपीएम एक सीट पर आगे चल रही है.
0: बात करते हैं अगर असम की, सो इन असम द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 70 सीट्स. इट हैज Its alliance partner AGP is leading on 7 seats, and another alliance partner BPF is leading on 8 seats, whereas the Indian National Congress is leading on 25 seats and AIUDF is leading on 2 seats. In Kerala, the CPM is leading on 23 and the Congress is leading on 53. And that is all time we have right now. We'll be back at 2:10 p.m. 2:30 p.m.
3: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है. 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है. आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद का इजहार किया है. तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है. हुक्मरान डीएमके तीसरे मकाम पर चली गई है. वजीर आला एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं. केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ बाएं बाजू महाज के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाजे अक्सरियत की समत बढ़ रही है. पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है. और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सबकत हासिल है. अब खबरें तफसील से. चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं. ताजा रुझान के मुताबिक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने शानदार सबकत हासिल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में अदाकार सी जोसेफ विजय की सरबराही वाली नई पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि ओपोजिशन की ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दूसरे मकाम पर है और हुक्मरान डीएमके पद हासिल कर ली है. मगरबी बंगाल में आज असेंबली के 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है.

0: तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के रुझानात सामने आ गए हैं। नई पार्टी टीवीके ने 111 सीटों पर सबकत हासिल करके शानदार शुरुआत की है। ओपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 55 हलकों में सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान डीएमके पार्टी 49 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर है। आसाम में 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 73 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि उसके इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 1 सीट पर कामयाबी मिली है और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 24 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि 10 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 5 सीटें जीती हैं और 57 हलकों में उसे सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान सीपीएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और 23 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी सीपीआई को 9 सीटों पर सबकत हासिल है। केरला कांग्रेस 7 पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से भी नतीजे मिल गए हैं। अब तक 13 नतीजों का ऐलान किया गया है। हुक्मरान एआईएनआरसी ने 6 सीटें जीती हैं और 4 पर उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। डीएमके पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 पर सबकत हासिल है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर ही उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ताजा मालूमात के लिए हम अपने नामनिगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी सुशील, बताइए क्या ताजा सूरत हाल है
1: हिंदुस्तान के। देखिए कानून, जुनूबी हिंदुस्तान के इस सूबे में जो इस वक्त तक हालात नजर आ रहे हैं, ताजा हालात जिन्हें कहें, तो जो फिल्म स्टार विजय हैं उनकी पार्टी टीवीके वो जबरदस्त जीत हासिल करती नजर आ रही है और जैसा कि रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि यहां जो अक्सरियत है वो 118 सीटों पर तय होती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब कुछ शाम तक नतीजे आएंगे पूरी तरह से, तब जो है तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। विजय की एंट्री जो है यहाँ के सियासी जो माहौल है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। जी,
0: इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात बीजेपी के हक में हैं और पार्टी जबरदस्त फर्क के साथ आसाम और मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने की जानिब गामजन है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एक और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के रुझान बीजेपी के हक में सामने आ रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि इनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूरंदेशी पर मबनी नजरिए और रियासत में बीजेपी कारकुनों की अनथक कोशिशों की अक्कासी होती है। बीजेपी के लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने असेंबली इंतखाबात में तारीखी मैंडेट देने पर आसाम और मगरबी बंगाल के लोगों के तई तशक्कुर का इजहार किया। मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात के तनाजुर में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जनाब पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मुकाबला एनडीए और टीवीके पार्टी के दरमियान है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इधर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इब्तदाई रुझानात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शुरुआती रुझानात हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर वाजे हो जाएगी और इसके बाद ही नतीजों के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा।
3: 2-2.5 घंटे बाद जब स्थिति और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तब बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। हर राज्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 राउंड हुए या 3 राउंड हुए होंगे, 20 राउंड बाकी हैं हर असेंबली में, तो इतनी जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ताज़ा रुझानात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि वजीर

0: आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। पांच रियासतों के सात असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो दो असेंबली हलके और गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक असेंबली हलका शामिल है। ताजा नतीजे के मुताबिक बीजेपी ने दो सीटें जीत ली हैं और तीन हलकों में उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर आगे चल रही हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर हलके में बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के फर्क से हरा दिया। नागालैंड के कोरिदांग असेंबली हलके में बीजेपी के दाओचिर आई इमचेन ने आजाद उम्मीदवार तोशिकाबा को 3,123 वोटों से शिकस्त दी। कर्नाटक में बीजेपी के श्रीनिवास टी दास करियप्पा देवनागरी साउथ हलके में आगे चल रहे हैं, जबकि बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश होलप्पा मैती 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस को 164 रन का जीत का निशाना मिला था, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। एक दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद जाहिर किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले बीजेपी की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएम के तीसरे मकाम पर चली गई है। वजीर आला एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ बाएं बाजू के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाजे अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. BJP heads for landslide victory in West Bengal, leads on 193 seats out of 293, Trinamool ahead on 95 seats. In Assam, BJP set to return to power for a third term. In Tamil Nadu, actor turned politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on third spot, Chief Minister MK Stalin trails. In Keralam, Congress-led UDF marches towards a clear majority to replace LDF. NDA on way to retain power in Puducherry. In assembly by-elections, BJP wins one seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland. Early trends are now available for all 4 states and the Union Territory of Puducherry, which went to polls for assembly elections. Initial trends that emerged have sustained as counting rounds progress into the day. As per latest counting, the BJP has taken a surprise lead in West Bengal, while in Tamil Nadu, new entrant Tamilagavetri Karagam, TVK, led by actor C. Joseph Vijay, has surged ahead. Opposition AIADMK is in second position, and the state's ruling DMK is trailing at third spot. In Keralam, Congress-led UDF has secured a comfortable lead, while the ruling BJP has secured a big lead in Assam. In West Bengal, the BJP is heading towards a victory as per trends available so far. Counting is taking place for 293 assembly constituencies out of a total 294. Trends are available for all 293 seats. BJP is leading in 193. Trinamool Congress is ahead in 95, CPM

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, एजेयूपी 2, एआईएसएफ 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आठ सीकर जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के

0: में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
2: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में
2: जी। आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोयडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में

0: वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
1: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहां?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। अब पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देशभर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम ऑन द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। The elections that were held in four states and one union territory. You are with us on Janadesh 2026. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vishal Sharma, and we have a panel of two very distinguished guests in our studio. Once again, we have senior political analyst N.K. Singh and senior journalist Umesh Chaturvedi with us. Both of you, welcome to the program.
3: Thank you.
4: जी स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से अतिथियों से हम बात भी करेंगे, चुनाव नतीजों पर चर्चा भी करेंगे, और फिलहाल सबसे पहले डाल लेते हैं नज़र अभी तक के जो लेटेस्ट जो हमारे पास ताज़ा रुझान है और जो हमारे पास परिणाम इस समय हमें जो मिले हैं। असम की अगर हम नज़र डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 22 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। असम गण परिषद 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 2 पर उसे विजय मिली है, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी तक उसे कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 21 सीटों पर आगे चल रही है।
2: If we talk about Kerala, then the INC or the Indian National Congress, which is part of the UDF, is leading on 44 seats. It has won 19 seats till now. Its partner IUML is leading on 20 seats, has won 2 seats, and Kerala Congress is leading on 5 seats, has won 2 seats, whereas the BJP is leading on 2 seats, and the CPM, which was part of the present government, the LDF government, CPM is leading on 20 seats. It has won 7 seats. CPI is leading on 4 seats. It has won 4 seats so far.
4: पुदुचेरी के नतीजों पर नज़र डालें तो AIADMK को 1 सीट मिली है और AINR कांग्रेस को 9 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, 1 सीट पर वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर वो आगे है। DMK 3 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट जीत चुकी है। ये हुई पुदुचेरी की जानकारी, और इसके बाद अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ।
2: राइट जी, तमिल टॉकिंग ऑफ तमिलनाडु, नाउ वी हैव रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम अबाउट 234 सीट्स। The DMK, which was in government till now, is leading on 52 seats. It has won only 1 seat so far. TVK of actor Vijay, that's Tamilaga Vettari Karagam, is leading on 106 seats. It has won 2 seats right now. The AIADMK, which is part of the NDA alliance along with BJP, is leading on 54 seats. It hasn't managed to win any seat till now. The BJP is leading on 1 seat and not won any seat till now.
4: पश्चिम बंगाल के रुझानों और नतीजों पर नज़र डालें तो अभी तक हमें वहां से कोई नतीजा तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल से, लेकिन रुझान हमारे पास लगातार आ रहे हैं। 293 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 293 सीटों में से 194 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बीजेपी ने वहां पर भाजपा ने जीत हासिल कर ले, आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 194 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है।
2: एंड जॉइनिंग अस ऑनलाइन नाउ वी हैव पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह बिहारी, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर विनय सिंह बिहारी, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
5: Thank you very much.
2: Mr. Bihari, we were just telling our listeners the trends.
5: You can name me Vinay Ji.
2: तो अभी हम अपने हाँ जी बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल से जो ट्रेंड्स रुझान आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि इस बार अब भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 193 सीटों पर उसको बढ़त मिल चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 95 सीटों पर अभी जो है

0: बढ़त मिली है। आप ये जो रुझान आ रहे हैं, आप इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि जो पिछली बार की 77 सीट्स थी उसके कंपैरिजन में अब डबल से भी ज्यादा जो है इस वक्त बीजेपी उन सीटों पर आगे बढ़ी हुई है?
1: एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर थी और सत्ता विरोधी लहर थी, ये तो साफ जाहिर हो रहा था। हम लोग बाजार जाते थे, ऑटो रिक्शा वालों से बात करते थे, सामान्य लोग बिल्कुल खिलाफ बोल रहे थे, आज से नहीं, 3 महीने पहले से। जहां भी हम जाते थे, चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है। और ये जो 26,000 अध्यापकों की नौकरी बिल्कुल एकदम से, वो 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे थे और 26,000 अध्यापकों की नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कुछ गड़बड़ किया था इन लोगों ने, और जो आरोप था कि जो प्लेन कापी जमा करके आए हैं, बिना कुछ लिखे अपना नाम और रोल नंबर लिख के चले आए हैं बस, वो सिलेक्ट हो गए, और जो मेरिट लिस्ट में जो मेहनत करके गए थे वो नहीं चुने गए। तो 26,000 अध्यापकों की नौकरी का जाना, ये बहुत बड़ा शॉक था नई पीढ़ी के लोगों, युवाओं के लिए, कि फिर हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो खालिदा जिया के हटने के बाद जो हिंसा हुई, एंटी हिंदू, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, और इसी दौरान यहाँ मुर्शिदाबाद कांड हो गया, जिसमें वो वक्फ बोर्ड के आंदोलन के बहाने से वहाँ दो हिंदुओं को मार दिया गया गांव में घुस के, वो एक खास कम्युनिटी के लोगों ने घुस के दो हिंदुओं को मार दिया
0: जी।
1: और जो उस तरह का उबाल हुआ, और जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में जो शॉक एक लगा
0: जी,
1: वो एक बहुत बड़ा शॉक हम लोग देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, हम बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो वो शॉक, एक दो जो शॉक लगे, एक तो 26,000 नौकरियों का अचानक से जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ने किया है, इसलिए 26,000 नौजवान युवाओं की नौकरी चली गई, और अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, अनिश्चय भविष्य हो गया। और सेकेंडली, वो जो बांग्लादेश बगल में है, पश्चिम बंगाल के बगल में, जैसा कि आप जानती हैं, हम लोग ट्रेन से अगर चाहें तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो इतने नज़दीक एक देश में एंटी हिंदू हत्याएं हो रही हैं, और यहाँ मुर्शिदाबाद जैसा कांड हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं में एक पैनिक क्रिएट हो।
2: जी विनय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का और सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव रखा, उसने मतदाताओं को किस हद तक छुआ?
1: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स ने छुआ। ये इन एडिशन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उस तरह के कल्चर को लेकर जो बात छिड़ी, पश्चिम बंगाल का कल्चर ये तो नहीं था कि हत्याएं हो
2: जी,
1: एंटी हिंदू चीजें हो, सांप्रदायिक बातें हो, ये तो नहीं था जो सत्तारूढ़ दल ने किया। तो उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से लोगों को कन्वे किया कि देखिए, बंगाल की संस्कृति रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से शुरू होकर के, और अनेक कलाकार बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हुए, उनकी संस्कृति रही है, मार काट और गाली गलौज और हिंसा नहीं रही है, सांप्रदायिकता नहीं रही है। तो इसको लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से यहाँ रह के काफी उन्होंने जनसभाएं की
0: जी,
1: और इतना बढ़िया उन लोगों ने कन्विंस किया है कि अद्भुत है। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी, अन्य भाजपा के लोग भी बहुत ही बढ़िया से उन लोगों ने कन्वे किया है। मुख्य बात यह है कि आम लोगों को जो वो बोलते थे वो उनके हृदय में उतर जाता था, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हो, शुभेंदु अधिकारी, और यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, अद्भुत ढंग से ये हुआ है।
2: धन्यवाद विनय जी हमारे साथ, हमसे बात करने के लिए। एनके सिंह जी, अब बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग अब बिल्कुल साफ होती दिख रही है, क्या अब

0: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार, अब हम बंगाल में किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
1: ये एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि बीजेपी एक उस इलाके में जो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी समझ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नेशनलिज्म का सूत्रपात ही यहीं से हुआ है, बंग भंग का जो हुआ मूवमेंट वहीं से नेशनलिज्म मूवमेंट आया है। तो आज बीजेपी जो उसको ओन अप करती है, दरअसल वो बंगाल का है। तो अब जब गवर्नेंस में जब आप आ रहे हैं तो क्रॉस करेंट्स होंगे, और माइंड यू वहां पे 27-28% मुसलमान है, तो आप वहां पे कैसे लेके, यूपी में तो आपका कम है, 18-19% है, लेकिन वहां पे एक साइजेबल नंबर है। वहां पे डेवलपमेंट क्या इगैलिटी सबका साथ सबका विकास वाला हो पाएगा? और होगा तो जो दो वर्गों के बीच में इतनी इस चुनाव के बाद से दुराव हो गया है, उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिलीवर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और वो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो गई हैं। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है, अगर आप जंगल महल एरिया में देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इन्हीं दो जगहों पे अच्छा रहा है, लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम का तो वो भी नेशनल एवरेज से सवा गुना बंगाल का ज्यादा है। तो उस चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी करें, डेवलपमेंट दिखाई भी दे, सोशल फीचर्स जो हैं, जो सामाजिक दुराव हो गया है उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, क्योंकि अब आप गवर्नेंस में हैं।
2: जी,
1: तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रहेगा।
2: जी, एंड वी हैव रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। लेट्स फर्स्ट लिसन इन टू व्हाट बीजेपी एमपी रवि किशन सेड ऑन द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स दैट हैव कम इन टुडे।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, पूरे बंगाली समाज को गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना, और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, उस माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, माँ दुर्गा की शक्ति। आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया, दोबारा बंगाल अपने कदमों पे अपने अध्यात्म अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई, कि भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का पूरा आतंक मचा हुआ था, उससे आज हम लोग मुक्त हुए, हमारा भारत मुक्त हुआ 2047 के सपनों में। अब बंगाल इकोनॉमी में आगे बढ़कर हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बनेगा इस भारत की। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को।
0: जी, विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा है, ये सुनते हैं।
4: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन्म दिया था, उस विचार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, और इसलिए बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, पुदुचेरी में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए ने तमिलनाडु में भी अच्छा किया और केरल में भी हमने अच्छा किया है। इन पांच राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत शानदार है, उसका हम अभिनंदन करते हैं।
2: एंड नाउ लेट्स लिसन इनटू व्हाट सीनियर कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी हैड टू से अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग इन।
5: नतीजों के बाद अगर और मगर का बहुत प्रश्न नहीं रह जाता है। ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ गए थे, लेकिन अंततो गत्तो मैं ये कह सकता हूँ कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारा है। बाकी जो भी ताकतें जीती हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उस जीत पर भी विजय की जीत पर भी उनको बधाई देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि वो जीत हमारी हार नहीं है।
2: Mr. N.K. Singh, we just heard Imran Pratap Gadi, senior Congress leader, saying he was congratulating the BJP, but he's saying their win is not our loss. How do you interpret that?
6: नहीं, उन्होंने बीजेपी को नहीं कांग्रेचुलेट किया, विजय को किया, विजय को।
2: My bad. Sorry. Yeah.
1: There is a logical fallacy. Yeah. When you study logic, there is a fallacy which is described as a selective appropriation.

0: ऑफ फैक्ट्स
1: जी.
0: हियर इमरान गढ़ी इज सेइंग कि साहब वो हमारी हार नहीं.
1: मिस्टर सिंह आई विल इंटरप्ट यू हियर बिकॉज बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी इज ऑनलाइन विद अस. मिस्टर रूडी वेलकम टू आवर प्रोग्राम.
2: हाय
1: जी मिस्टर रूडी, योर कमेंट्स ऑन द वे द बीजेपी हैज यू नो ऑलमोस्ट मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ दीज इलेक्शंस.
2: सो व्हेन वी लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट बंगाल.
1: यस.
2: Now, we never had a government in West Bengal. This is the first time since independence we have had a government there. Yeah. Now, we're going to have a government there. Now, this mandate was truly between the Prime Minister and Mamata Banerjee because we did not have any leadership to project. Now, having said that, it's a fact that with this election, the presence of the Prime Minister has been reimposed and reiterated at the national level that he's just not there in Delhi and other states. He's there even in a place like West Bengal. That how did we reach them? We reached them through the schemes and the programs of the Prime Minister, which possibly was perceived there but not implemented.
1: Right.
2: Now, it's a loss to TMC, whatever maybe the reasons, could be arrogance, could be incumbency, but end of the day, it's a victory of the BJP and the Prime Minister. That's part A. Assam, we had a government.
1: Hmm.
2: We have gone back to the government again. We shall be going back to the government again. So that's not an issue. And the performance of the government and the Prime Minister's leadership has been restored. Then we go to Tamil Nadu. Well, there is a surprise element. We may not be there, but the fact is that DMK is not there anymore. And with a surprise, which many people say was not a surprise, but that's a debatable factor.
1: Yeah.
2: So let us see how the government is formed there in Tamil Nadu. And coming back to Pondicherry is, of course, a very pleasant victory for the BJP again, because we have positioned Kerala, of course, we do not exist, but end of the day, the major states which have gone to the elections, which had stakes in the whole election, was primarily starting from West Bengal. So it's a great achievement for the workers, for the leaders, for the people who have toiled there, the workers and the leaders who had gone there.
1: मिस्टर रूडी, अभी आपने जैसे कहा कि तमिलनाडु और केरल में ऑफकोर्स बीजेपी ने बहुत ज्यादा तो नहीं सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक आगे इन राज्यों में जो अपनी बढ़त अपनी बनाने की जो कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, आप फिर एक छोटे से सवाल पर चले आए कि जहां हमें जीत हुई है उसकी चर्चा आपने छोड़ दी, जहां हम अभी संघर्ष में है उसकी चर्चा कर दी. तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल और ये मैंडेट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में. दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध में वहां अगर किसी को अगर सामने देखा गया था तो ममता बनर्जी को, वो अब नहीं रही. तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से कि भारत की पकड़ और देश के प्रधानमंत्री की पकड़ पश्चिम बंगाल में. उसके आगे हम लोग आते हैं असम में, जहां हमारी सरकार थी, फिर से एक बार प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार फिर से एक बार वहां बनेगी हेमंतो के नेतृत्व में. जहां तक तमिलनाडु का है, हम वहां पर मेजर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके अपने आप को ये बात साबित करना चाहते थे कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं. वहां एक बड़ा सरप्राइज है जो हमारे जैसे लोगों के लिए और सबके लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये सच्चाई है. तो वहां भी परिस्थिति सबके लिए बदल चुकी है. ना वहां डीएमके है, ना वहां एआईडीएमके है, वहां एक तीसरी पार्टी उभर के आ चुकी है. रहा पांडिचेरी, तो वहां बहुत ही खूबसूरत परिणाम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है. और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में वहां भी हमारी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में, और केरल में हमारी उपस्थिति कम थी, हम वही रह गए
1: जी.
2: और प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिख रहा है.
1: राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: जी उमेश चतुर्वेदी जी, रूडी जी ने जो कहा कि पूरा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जो जीत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस बार जो हमने देखा प्रचार के दौरान भी, अमूमन प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा प्रचार के बाद दिल्ली लौट आते थे, लेकिन अब की बार कई बार वो कोलकाता में रहे, राजभवन में रुके, रात रात भर रुके और दो दो दिन तक रुके. और इसके अलावा जो है, जो मोदी जी ने जो कहा वहां पर कि हर सीट पर मैं उम्मीदवार, इसने कितना असर किया?
4: मोदी जी का जब से भारतीय राजनीति में उभार हुआ है और जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह वो ऐसी ही बात कहते हैं. तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी थी पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी. पीछे की जो गलतियां थी 2021 में भी आप याद कीजिए, लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों से सबक सीखने की एक कोशिश थी और जो कोई भी कसर बाकी न रह जाए ऐसा उन्होंने किया. और एक चीज़ पश्चिम बंगाल की

0: लोग जब चर्चा कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूड़ी जी ने भी उसी पर बहुत जोर दिया, देखिए, और हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे थे। एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए वहां का पारा क्लब जो कह सकते हैं, जो मोहल्ला क्लब है, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो कट मनी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने समय से पारा क्लब रहे हैं जहां लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो इन कमेटियों को, क्योंकि सीपीएम के बरक्स जब वो चुनाव जीत करके आई थी ममता बनर्जी, तो सीपीएम की जो स्थानीय लोकल कमेटियां जो होती थी, उन कमेटियों की तुलना में उन्होंने पारा क्लब को मजबूत किया था। 1,01,000 रुपये का वो दिया था, सहयोग दिया था। बाद में वह पारा क्लब इतने ताकतवर हो गए कि स्थानीय जो प्रशासन था उस पर भी वो हावी रहने लगे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकोगनाइज करते हैं, जो वहां शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक। शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतनमान का के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतनमान देंगे। और एक चीज और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है।
1: मिस्टर सिंह, आई वॉन्ट टू कम बैक टू एंड आई वॉन्ट टू स्टे ऑन विद

0: था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतनमान देंगे। और एक चीज और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है
1: जी।
0: कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है। जी
1: मिस्टर सिंह, आई वांट टू कम बैक टू एंड आई वांट टू स्टे ऑन विद वेस्ट बंगाल दैट लाइक वी सेइंग तृणमूल कांग्रेस एट the moment has been, you know, is leading on 94 seats. That's less than half the, not less than, but that's like little more than half the seats that it won the last time. But that doesn't mean that the party or its leader, Mamata Banerjee, is finished. You know, they

0: स्पेसिफिक, इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अब यूनिटी करनी पड़ेगी, और वो ऐसी हो कि जब जब जनता सत्ता से नाराज हो तो कम से कम उसको दिखाई दे कि हाँ एक यूनिटी है, हम उधर उधर जा सकते हैं। अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो वो मजबूर होके सत्ता के साथ खड़ी होगी, सत्ता को वोट देगी, तो ये मजबूरी ना है, इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस जो रैलिंग पॉइंट है, आज गिरे दिन में भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं, आज गिरे दिन में भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई अगर बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं, हम
1: जी
0: कांग्रेस को, लेकिन क्या ये बरकरार रहेंगे? इसके लिए अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आपको, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो क्या उन ओकेजन्स पे वो वाकई खड़े होके सहचित्ता बना पाते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बुरी तरह मिस कर जाती है।
1: Let's move on to Tamil Nadu. Like we are saying that it seems almost certain now that TVK of actor Vijay is on its way to make the next government. But from what we can see, the results and trends show that the party is all in all, 107 seats. It has won 5 seats. It is leading on 102. So it's still about 11, it's still 11 seats short of the majority.
0: Yeah.
1: Now, before the results, Vijay had very clearly said that it will not aligned with any party. But what now do you see if it falls short of the majority? Where do you see it moving? DMK, AIADMK, or even BJP, if it can?
0: A very, very valid question at this juncture. This was the question that was to be
1: yeah.
0: delved deep into. See, one thing is there, willy-nilly.
1: Yeah.
0: All these months that I had been tracking this leader,
1: yeah.
0: I found that there is a very palpable lurch towards BJP.
1: Okay.
0: He may not say there, and he had said openly right. that BJP is number one enemy,
1: yeah.
0: number two enemy perhaps.
1: Yeah.
0: DMK is also enemy. But now I think that somewhere they will align with BJP and its group.
1: Right.
0: So I think 11 members, not difficult.
1: Yeah.
0: And they will amass that much of a strength. And will form the government.
2: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनावों के पहले मतलब जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि AIDMK के साथ TVK का और NDA का जो हुआ है पूरा अलायंस बन जाए, लेकिन जो पलानी सामी जी हैं वो एकदम से तैयार नहीं हुए और वो तो विजयन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने तक को तैयार नहीं थे।
0: उमेश, यही टैक्टिकल होशियारी विजयन ने की कि वो साथ में वो भी नहीं गए तो आज इतनी सीटें मिली है, वरना AIDMK आज चीफ मिनिस्टर बना रहा होता और विजयन सेकंड नंबर पे होते
2: जी।
0: तो ये अच्छा हुआ कि विजयन ने अपना किया और उससे उनको गेन हुआ।
2: तो अनुभा जी के सवाल का जवाब यही है कि ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी मीडिएटर बने और AIDMK के साथ सरकार बने।
1: और एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स इज नथिंग बट
0: चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी,

0: 11:10 p.m. when we will continue this discussion. Thank you. Namaskar.
1: Janadesh 2026.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी.

0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, पद्मलोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
1: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया और श्रीमती कल्पना चंदसौलिया लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं। इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुएन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टेंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझना आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सीखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे, तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ। ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था, कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके

दोस्तो नमस्ते। दोस्तो किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम,

0: के बैठ सको।
1: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।

0: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो।
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है।
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता।
2: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
2: क्या मतलब?
0: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो। आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम

0: ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ।
1: अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे।
0: अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

तेरी बरिया बना नहीं।

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप प्रस्तुत है उर्दू मजलिस।

0: تخلیق کار جس سماج میں رہتا ہے وہ اس میں کچھ تلاش کرتا ہے. دنیا کی بے ثباتی، غم روزگار اور عصری مسائل پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے. سماج میں پھیلی برائیوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے اور ان کو موضوع بنا کر افسانہ تخلیق کرتا ہے. یہی بات شاعری کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہے. کچھ فنکار اور تخلیق کار شاعری اور نثری تخلیقات کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہیں. انہی میں ایک نام جناب خورشید اکرم کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات و افکار کی ترجمانی اپنے افسانوں میں اور شاعری میں کی. سمعین، روبرو پروگرام میں لیجے سنیے جناب خورشید اکرم کی بات چیت. آپ سے میں گفتگو ہیں جناب مالک اشتر.
1: اردو مجلس کے پروگرام روبرو میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان، ایک ایسے مہمان جنہوں نے فکشن نگار کے طور پر، شاعر کے طور پر، ایک مدیر کے طور پر، ترجمے کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں اور ان کے کارناموں کو علمی ادبی دنیا میں سراہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈین انفارمیشن سروس کے ایک سینئر آفیسر کے طور پر انہوں نے ہندوستان کے مختلف نشریاتی اداروں میں انتظامی ذمہ داریاں بھی انجام دی ہیں. ہم آج آپ کو ملوا رہے ہیں مشہور فکشن نگار اور شاعر جناب خورشید اکرم صاحب سے. خورشید اکرم صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے.
2: بہت شکریہ مالک اشتر صاحب، میں اردو مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا.
1: خورشید اکرم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کا آغاز وہاں سے کریں کہ جہاں سے آپ کی تعلیمی زندگی کا آغاز ہوا اور جس سرزمین نے آپ کے اندر علم و ادب کا شغف پیدا کیا، اور وہ سرزمین ہے کلکتے کی. اس کے حوالے سے، ان یادوں کے حوالے سے کچھ فرمائیے.
2: دیکھیے، میرا جنم مٹیا برج میں ہوا، یہ لکھنؤ ثانی ہے. سقوط اودھ کے بعد واجد علی شاہ نے جس سرزمین کو جا کر آباد کیا وہ مٹیا برج کی سرزمین ہے. مٹیا برج یوں کہیے کہ دو دھارائیں ایک ساتھ ملتی ہیں وہاں پہ. ایک طرف وہ لکھنوی تہذیب کی واقعات وہاں پر ہیں اور دوسری طرف وہ مزدوروں کی بستی ہے، کارخانے بہت ہیں وہاں پہ. تو وہاں پر دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں اور علم و ادب کی محفلیں وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں. بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ اردو معاشرہ شاعری کا معاشرہ ہے، تو شعری محفلیں بہت ہوتی تھیں، قصیدے کی محفلیں اور اس کے علاوہ مشاعرے بھی ہوتے تھے. تو ایک بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ سب ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم لوگ 60 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور 60 اور 70 اور 80 تک کی جو دہائی ہے، یہ جتنے بھی اردو معاشرے ہیں یہ سب بہت ہی سرگرم اور فعال تھے ادبی طور پر. میں آپ کو بتاؤں کہ اسکول کا زمانہ تھا ہمارا، میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں. 1978 میں نے میٹرک پاس کیا ہے، 1963 کی میری پیدائش ہے. 14-15 سال تک ہم لوگوں نے بہت سارا، آپ یوں سمجھیے کہ ادب، اگر براہ راست آپ اس کو ادب عالیہ نہ کہیں تو بھی کم از کم پاپولر لٹریچر تو ہم نے پڑھ لیا. پاپولر لٹریچر اور ادب عالیہ کے درمیان کی چیزیں، مثلاً 20ویں صدی، شمع، دبستان، یہ سب رسالے ہمارے ہاں آتے تھے اور ہم لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے اور بہت ایسے کہہ سکتے ہیں کہ محفل جمع کے پڑھا کرتے تھے. اور مجھے خاص طور سے شاعری کے بارے میں، میں شاعری سے بہت زیادہ مرعوب رہا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ بھائی یہ شاعر کیسے شعر کہہ لیتے ہیں، مجھ سے تو یاد تک نہیں ہوتا. لیکن کہانی میں میری بہت زیادہ دلچسپی تھی، تو ہم نے بچپن سے وہ جو 20ویں صدی اور یہ سارے رسائل تھے یہ پڑھنا شروع کیا. اور میں نے ایک بار کہیں یہ لکھا بھی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے، پھر ایک وقت کے بعد آتا ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اب آپ کے علم میں، خیال میں، فکر میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، اب وہی چیزیں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہر رسالے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور ایک خاص طرح کی تحریریں ہی اس میں آتی ہیں، تو وہ آپ کو بلند نہیں کرتی ہیں. تو تب اس تلاش میں ہمیں، اب لائبریری کو ذرا دیکھا جائے تو ہمارے ایک ہندوستانی لائبریری ہوا کرتی تھی، ہم کبھی کبھی وہاں جایا کرتے تھے. تو وہاں سے ہم نے، لیکن چونکہ میری پہلی دلچسپی افسانے پڑھنے میں تھی، تو میں نے ایک مجموعہ دیکھا، وہ کوئی منتخب افسانے تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ پڑھنے کی چیز ہوگی، میں لے کے آیا. تو اس میں سے کچھ کہانیاں مجھے یاد ہیں، جیسے میں نے اس میں منٹو کی کہانی کھول دو پڑھی، لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آئی جبکہ اس کہانی کے بارے میں نے سن رکھا تھا. اسی مجموعے میں دو کہانی مجھے یاد رہے گی جو زندگی بھر یاد رہی. ایک کہانی تھی लाजवंती जो राजेंद्र सिंह बेदी के, मैंने नाम सुना था, तो उस कहानी पर ने मेरे दिमाग पे कितना असर डाला मैं बता नहीं सकता। दूसरा एक बलराज मेहरा की कहानी थी जिसको मैं उर्दू में चूंकि नाम लिखा होता है और अगर नाम नामानुस है तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता, मुझे समझ में नहीं आया इसको मेहरा पढ़ू मेजा पढ़ू मेहरा पढ़ू क्या पढ़ू। बहरहाल बलराज नाम जहन में रह गया, तो उनकी कहानी वो थी जो मशहूर कहानी उनकी। तो यूं समझिए कि उसके बाद हम लोगों ने फिर शबखून और शायर और ये सब रिसाले, अल्फाज उस जमाने में आता था तो ये सब रिसाले हमने वहां पे पढ़ना शुरू किया। अच्छा वो कुछ जमाना ऐसा था कि अगर शायर बहुत थे तो ऐसा नहीं है कि फिक्शन निगार या नसर निगार नहीं थे, वो लोग नसर भी पढ़ा करते थे, अफसाने भी पढ़ा करते थे और बातें भी हुआ करती थी। दूसरे ये कि हमारे यहाँ खासतौर से मैं मटिया बुरुज की बात कहूँ, हमारे यहाँ एक अड्डा कल्चर होता, बंगाल का पूरे बंगाल का सिनेरियो है ये, खासतौर से मैट्रिक के बाद लड़के जरा आज़ाद हो जाते हैं घरों से तो वो फिर शाम को अड्डेबाजी करते हैं होटलों में चायखानों में किसी दुकान के ठिए पर। तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ में बैठ करके और जो मुझसे सीनियर थे उन लोगों के साथ में बैठने का मुझे मौका मिला और कुछ कुछ मैंने अदब के बारे में थोड़ा संजीदगी से सोचना शुरू किया या अदब को मैंने संजीदगी से लेना शुरू किया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी किसी दिन लिखना भी शुरू कर दूंगा और थोड़ा बहुत अगर कटर मटर लिखा भी तो उस पर कभी हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं मेरे जहन में इतने हाई आइडियल्स थे उस वक्त में जो जो कुछ मैंने पढ़ रखा था तो मुझे लगता था कि भाई मैं इस तरह नहीं लिख सकता। और वो जो रोमानी किस्म की 20वीं सदी के ज़माने में जो हमने पढ़ी थी रोमानी किस्म की बातें लिखने जुमले लिखने तो वो मुझे भाता नहीं था कि भाई नहीं नहीं ये बातें नहीं हुई तो ये बड़ी रोमानी चीज़ है इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। तो यूं मेरा सिलसिला रहा।
1: तो उसके बाद फिर आपने फरमाया कि लिखने की तरफ बाद में आए
2: जी,
1: तो ये कौन सी उम्र थी, किस मरहले पे आके आपको लगा कि अब आपको लिखना चाहिए और अभी तक जो मेयारात आपने लिए आपने कायम कर रखे थे जिसकी वजह से आप लिखने से थोड़ा सा बच रहे थे, तो वो कौन सा मरहला था जिसने इस चीज को तोड़ा और अब आपने फैसला किया कि अब आपको लिखना।
2: मैं इस पे जरा सा बाद में आता हूँ। देखिए असल में एक बात ये भी होती है मिडिल क्लास के लोगों का एक मसला ये होता है कि अदब जो है वो किसी तरह से हमारी रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाता, शायरी अदब इनसे कुछ नहीं मिलता। तो मिडिल क्लास का जो पहला मसला होता है कि भाई उसको अपनी तालीम मुकम्मल करनी होती है, यानी हम इसकी वजह से यानी अपने अदबी ज़ौक और शौक की परवरिश के लिए हम अपने तालीमी काम को नहीं रोक सकते। तो हमने हायर सेकेंडरी किया फिर ग्रेजुएशन किया ये सब करता रहा और नौकरी की तलाश रही इस दौरान में, ये सब शाना बशाना ये भी चलता रहा, अदब का काम भी चलता रहा, फिर इल्मी मजलिसें भी चलती रहीं गुफ्तगुएं भी चलती रहीं और इम्तहानात भी चलते रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी चलते रहे ये सब है। तो कई सारे मैंने इम्तहान उन दिनों मेरा जहन भी क्लियर नहीं था, मैंने शुरू में मुझे ये लगता था कि भाई ये उर्दू सिर्फ पढ़ के या आर्ट्स पढ़ करके कुछ नहीं मिला, कम से कम हमारे ज़माने में यही तसव्वुर था, तो या तो साइंस पढ़ें या कॉमर्स पढ़े। अच्छा मैंने साइंस से पढ़ना शुरू किया था लेकिन बावजूद मैं हायर सेकेंडरी साइंस से कर नहीं पाया, यानी मैंने इम्तहान नहीं दिया क्योंकि मुझे लग गया कि मैं इसे पास नहीं कर पाऊंगा और मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर थी और मैंने एक किसी दोस्त के सहारे मैंने सोचा था कि मैं इसको पाक निकाल लूंगा लेकिन वो दोस्त किनारे हट गया तो फिर मुझे लगा कि अब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा तो मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने कॉमर्स की तरफ चला गया। मैं हायर सेकेंडरी मैंने फिर कॉमर्स से किया फिर ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से किया। इब्तदान मैं एक कलकत्ते के एक ऑफिस में मुलाजमत भी की लेकिन चूंकि मेरा शौक था पढ़ना तो मैं अदबी रसाले अखबारात ये सब पढ़ता रहता, अखबारात बहुत पढ़ता रहा मैं, अंग्रेजी उर्दू थोड़ी बहुत हिंदी और बंगला सारी जबाने पढ़ने की कोशिश, बंगला बंगाल में रहा था अपने शौक से बंगला भी पढ़ी क्योंकि बहरहाल बंगला लिटरेचर इतना पावरफुल है और एक जिंदगी है जिसको हम जी रहे थे वहां पे। उसके बाद ये इत्तफाक है कि 1985 में एक एडवर्टीजमेंट निकला सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सर्विस की नौकरी थी, उसमें यही था ग्रेजुएशन था और थोड़ी सी चाहिए थी सहाफती। अच्छा मैं सहाफती तहरीरें लिखता रहा, कुछ हम लोग एक वॉल मैगजीन निकाला करते थे उसमें लिखा करता था, कुछ छोटे मोटे कहानी वानी ऐसी लिख दी कभी कहीं पे, तो इस तरह से था लेकिन मैंने कभी इनको संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये कम से कम वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ या जो मैं जो मेरे अंदर का इंसान है। 1987 फरवरी में नौकरी मुझे मिल गई यूपीएससी से और मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सर्विस में एज ऑफिसर में आ गया। मैं अपने बैच में जो मेरी बैच के लिस्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें नीचे था थोड़ा और उर्दू के उम्मीदवारों में सबसे आखिरी नंबर था मेरा और सबसे आखिर में मैंने ज्वाइन भी किया था। लेकिन मुझे इत्तेफाक से पोस्टिंग मिली तो आजकल उर्दू में सब एडिटर के तौर पे।
1: उस जमाने में, आजकल आज भी एक बहुत मुतबर रिसाला है, लेकिन उस जमाने में उस रिसाले की क्या शोहरा था और क्या आभा थी उसकी?
2: देखिए, आजकल का मामला ये है कि अब 82-83 साल हो गए इसको, रिसाले को आए। एक तो पहली बात यह है कि वो जो अदब का जमाना था बहुत ही सरगर्म जमाना था। कम से कम 3-4 नस्लें जो हैं उर्दू के लिखने वालों की उस वक्त मौजूद थी, बैक वक्त सरगर्म थी। सारे बड़े तरक्की पसंद उस वक्त तक मौजूद थे, सरदार जाफरी और इसमें चुगताई, सब लोग हयात थे उस वक्त में, या कुछ थे जिनका भी हाल ही में आसपास ही, जोश मलियाबादी उससे 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था, फैज साहब का कुछ पहले इंतकाल हुआ था, मगर ये जैसे सब लोग अभी जिंदा थे। अच्छा, तरक्की पसंदों के अलावा सारे जदीद अदीब और शायर वो सब उस वक्त सरगर्म थे, लिख पढ़ रहे थे। उसके बाद वो लोग थे जो जदीदियों का जिन्होंने इनकार किया था और वो 80 की दहाई में वो उभर के आ गए थे, और फिर वो लोग थे हमारे जैसे लोग थे जो बिल्कुल नए नए एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। यानी मैं आपको बताऊं कि शुमाली हिंदुस्तान और मशरकी हिंदुस्तान, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ तक के मद्रास, पेरम्बूर, इन सब जगहों पे उर्दू के लिखने पढ़ने वाले मौजूद थे। बिहार और यूपी की तो बात ही क्या कर लें, पंजाब में थे लोग। पंजाब में अभी वो नस्ल बाकी थी जो उर्दू पढ़ने वाली नस्ल जो वहां से इधर मुंतकिल हुई थी। तो यूं समझिए कि इतने सरगर्म जमाने में किसी रिसाले का सब एडिटर होना एक इतनी बड़ी बात थी।
1: आजकल जैसे
2: रिसाले का सब एडिटर होना, यूं समझिए कि जिन लोगों को कल हम दूर से देखा करते थे स्टेज पे, वो सब हमारे उसी दफ्तर में आके हमारे सामने बैठे हैं। कभी कुरतुल्लाह हैदर आ जा रही हैं, कभी अली जवाद जैदी आ जा रहे हैं, अली सरदार जाफरी आ जा रहे हैं।
1: ये तो एक ऐसा नौजवान कि जिसने अपने आप को रोक रखा है इजहार के मामले में, और उसके कुछ आला मेयारात हैं, और जो अपनी सहाफती किस्म की तहरीरों को खुद संजीदगी से नहीं लेता है, वो जब एक इतने बड़े रिसाले में उसके इदारती जो जिम्मेदारियां हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है, तो उसकी अपनी जो साइकी है, उसकी नफ्सियात में क्या फर्क आया, और क्या फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब हमें लिखना चाहिए?
2: देखिए, फैसला ये तो नहीं किया जा सकता है कि लिखना चाहिए, लेकिन ये जरूर हुआ कि जब हम एज ए रीडर कारी के तौर पे पढ़ते हैं तो उसमें कोई नज्म जब्त नहीं होता
1: जी।
2: हमारे सामने जो आ जाता है वो हम पढ़ लेते हैं, या जिस किसी ने अगर बता दिया तो वो पढ़ लेते हैं। मसलन अगर फर्ज कीजिए कि हम तरक्की पसंद अफसाना निगारों के बारे में बात कर लें मिसाल के तौर पे, तो अब हमने उनमें से किस किस को पढ़ा और किस किस को नहीं पढ़ा ये हमें नहीं ठीक पता। हमें तो जो मिलता गया और जो अच्छा लगता गया हम पढ़ते गए, वो हम अपने शऊर के लिए पढ़ रहे थे
1: जी।
2: लेकिन जब हम एक रिसाले में बैठे हैं तो अब हमें उसकी पूरी मालूमात हासिल करनी होगी, क्योंकि हमें मजामीन भी देखने हैं। मजामीन जो है पढ़ना और तनकीद को पढ़ना, उसमें से ये समझना कि ये नकाद जो है जो बात कर रहा है वो ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ समझ ही नहीं है, उसके लिए मालूमात भी जरूरी है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पूरे मंजरनामे में कौन कहां पर मौजूद है।
1: अब आपको तखलीकात की कदर का तयन करना,
2: अब तखलीकात तखलीकार सबको हमको जानना है। मतलब आप यूं समझिए कि सिर्फ यही नहीं है कि हमको तखलीक के अंदरून में जाना है, बल्कि पूरी तखलीकी दुनिया या मंजरनामा है, इसका पूरा महलो वकू, इसकी तारीख, इसका जोग्राफिया सब हमारे जहन में होना चाहिए। हम जब तक ये नहीं समझ पाएंगे हम किसी मजमून के बारे में तय नहीं कर सकते कि आया ये मजमून सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मामला ये हो गया कि कल तक तो मैं कारी था
1: जी।
2: अब मैं कारी का नुमाइंदा हो गया
1: जी।
2: एडिटर जो है वो कारी का नुमाइंदा होता
1: है,
2: और वो कारी और मुसन्निफ के दरमियान में एक पुल बन जाता है। अब वो उसके ऊपर दोनों की जिम्मेदारी है, तख्लीककार के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, यानी कोई ऐसी चीज वो नहीं ले सकता जो अच्छी है और उसने मना कर दिया हो, और खराब हो और उसने छाप दिया हो। इसी तरह से कारी के साथ में यह है कि भाई कारी ये उम्मीद करता है कि चूंकि एडिटर के हाथ से गुजर के ये तहरीर उस तक पहुंची तो अच्छी होनी ही चाहिए।
1: मुसन्निफ के लिए दयानतदार रहना है,
2: मुसन्निफ के लिए
1: इनके जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना,
2: मुसन्निफ के लिए दयानतदार ही नहीं पारक भी होना,
1: पारक भी होना है।
2: तो ये जो चीज है, तो अब मेरे लिए यूं समझिए कि अब मुझे तो पूरी बिसात बिछानी पड़ी अपने सामने। जितने गैप्स थे मेरे मालूमात में तो मैंने बहुत बाबाबता 1.5-2 बरस जी लगा के फिर उसके बाद पढ़ा लिटरेचर खूब, ये समझने की कोशिश की कि ये पूरा मंजरनामा कैसे तरतीब पाया है
1: जी।
2: और अब हम इसमें कहां ऑपरेट करेंगे, कैसे हम चलेंगे
1: जी। जब बतौर नायब मुदीर आपका ये जो पूरा टेन्योर रहा, इसके बाद एक और आपकी तकरारी होती है दूसरी जगह, और फिर उसके बाद हमें मालूम है कि आप दोबारा से आजकल में मुदीर के तौर पर आए
2: जी।
1: तो आप जब پلٹ کے واپس آئے اور اس میں مکمل طور پر جو ذمہ داریاں تھیں ادارہ تھی وہ آپ ہی کے پاس آ گئیں ظاہر ہے, تو اس موقع پہ ایک تو آپ کا پچھلا تجربہ کتنا کام آیا اور دوسرے یہ کہ پھر آپ نے اس میں کیا کرنے کی کوشش کی؟ بطور مدیر جو آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہوں, کوئی ایسے نمبر نکالے ہوں جس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہوں کہ وہ قابل ذکر ہیں.

0: अब मामला ये है कि देखिए, अदब की दुनिया में मैंने ये महसूस किया कि सही मानों में इज्जत लिखने वाले की है
1: जी,
0: और इज्जत लिखने वालों में भी तख्लीकार की इज्जत है
1: जी
0: ज्यादा। और मैं अब जिस दुनिया में हूँ वहां पे अब मेरे सामने एक सवाल ये है कि इस दुनिया में जो मेरी लेजिटिमेसी क्या है, यानी मैं एक कुर्सी है जिस पर बैठा हुआ हूँ, मेरी समझ अच्छी है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को अपनी शख्सियत या हमारी अंदर क्या सलाहियत है ये बताने के लिए कुछ हमें लिखना भी जरूरी होगा। तो मेरे जाहिर है कि मेरी बहुत बुनियादी जो पसंद थी वो अफसाना थी, तो मैंने कई अफसाने लिखे और काटे पे मुझे लगा कि ये बात बन नहीं रही है,
1: खुद ही मुस्तरद कर दी
0: जी, खुद ही मुस्तरद करता रहा। हमारे एक दोस्त मुशरफ आलम जौकी थे, वो बहुत अफसाना निगार थे, बहुत अच्छे और बहुत तेज रो थे, बहुत ज्यादा लिखते थे, तो वो तो बात बात को अफसाना बना देते थे और हमें बड़ी हैरत होती थी। तो हमने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक लम्हा वदियत आया
1: जी।
0: ये 1989 की 1 जनवरी की बात है, जब मैं नोएडा में हमारे एक दोस्त हैं, रात हमने 31 दिसंबर की रात वहां गुजारी थी। ये मैं जरा सा एक वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि पहली तख्लीक क्या होती है, जैसा होता है 1 जनवरी 31 दिसंबर की रात बनाई, और सुबह को जब हमें आना था तो ठंडक के दिन थे और नोएडा से उन दिनों दिल्ली आना बहुत मुश्किल काम था, बसें मिलती नहीं थी, शार्टर बसों में बहुत भीड़ होती थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती थी। तो बहरहाल किसी तरह से जैसे तैसे करके हम बस में चढ़ गए, और उस वक्त सुबह को जो है वो एक कार्टून छपा था लक्ष्मण का
1: जी,
0: जिसमें वो था कि भाई पिछला साल गुजर गया है, और एक वो जो उनका कॉमन मैन था
1: जी,
0: वो बेबसी से देख रहा है कि ये तो चला गया
1: जी।
0: तो एक कुछ बात दिमाग में आई, लेकिन बस की भीड़ में इतना कुछ सोचने का यारा नहीं था। हमने जैसे तैसे वक्त गुजारा, अपना दफ्तर आ गई है। दूसरे दिन शाम को दफ्तर से आने के बाद वो बात जो है नए सिरे से मेरे दिमाग में आना शुरू हुई, और फिर मुझे लगा एक बस, और फिर बस का ख्याल, फिर बस का इंतजार, और ये बातें अब आना शुरू हुई हैं। तो रात में 10-11 बजे करीब बैठा और मैंने लिखना शुरू किया। तो अब मुझे उसके बाद का कुछ पता नहीं है, दुनिया माफिया से बेखबर। मैंने रात भर में 7 सफ़े लिखे और एक जगह पे जाके मेरा कलम रुक गया, और मैंने कहा भाई ये ठीक है। अब उसके बाद में इतना थक चुका था मैं कि उस वक्त और पढ़ने का वो नहीं था, फिर मैंने उसको रख दिया। बाद में मैंने निकाल के देखा और वो मेरी पहली कामयाब कहानी, जो मेरी पहली कहानी है हब्स के नाम से मैंने लिखी
1: के नाम से पहली।
0: जब मैंने ये कहानी लिखी और जब लिख ली और बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैंने कहा हाँ, अब जिस मुसन्निफ को मैं अपने अंदर से तलाश कर रहा था इतने दिनों से, अब जाकर के निकला है, तो अब मुझे इस बात की फिर जो तख्लीक का सुख होता
1: मतलब
0: है,
1: मतलब जिस करीने से मैं खुद को बयान करना चाहता था, बयान करना चाहता था, मैंने वैसा कह दिया।
0: मतलब जाहिर है कि एक तो आपका ख्याल होता है, दूसरे ये उस ख्याल को फनकाराना तरीके से बयान करना।
1: तो जब वो अफसाना शाया हुआ तो कैसा रिस्पांस था?
0: देखिए, शाया वो अफसाना बहुत देर से हुआ।
1: अच्छा,
0: वो मैंने लिखा इत्तेफाक से, वो मैंने शायर के एडिटर थे इफ्तिखार साहब, वो आए थे
1: जी।
0: और जौकी ने कहा कि भाई खुर्शीद ने अफसाना लिखा है, आप इनसे ले लीजिए। उन्होंने कहा लाओ भाई अभी दे दो मुझे
1: जी।
0: और वो ले गए। उसके बाद साहब वो पता नहीं उनके क्या प्लान था, तो 3-4 साल लग गए उस अफसाने को शाया होने में।
1: अच्छा, उससे पहले कुछ और कहानियां?
0: उसके पहले कुछ कहानी छपना शुरू हो गई। पहली कहानी मेरी जो छपी वो ऐवाने उर्दू में गर्म कोट के नाम से, जो उनके इंतखाब में भी शामिल है। वो मैंने एक तरह से बैनल मुतोनियत का सहारा लेकर के, बेदी की एक मशहूर कहानी, बेदी मेरे बड़े फेवरेट राइटर थे, तो उनकी एक कहानी थी गर्म कोट, मैंने उस कहानी से इस्तेफादा करते हुए वह नई कहानी लिखी थी बिल्कुल अपने हालात। मगर वो अफसाना जब बाद में कई साल के बाद छपा, तो उस अफसाने ने फिर मुझे कई लोग दिए, उनमें से एक सिद्दीक आलम भी थे जिन्होंने पहली बार मुझे उस अफसाने को पढ़ के खत लिखा था।
1: अच्छा, फिक्शन की दुनिया में इस मकबूलियत के बावजूद नज्म की तरफ कैसे आना हुआ? क्योंकि जो कुछ आपके मन में था वो कह ही रहे थे, और उस आप जाहिर है उस इजहार से मुतमईन भी थे।
0: देखिए, मैंने इस बात को एक जगह लिखा भी है कि कई बार जो है वो बातें बहुत होती हैं और आपके पास वक्त नहीं होता। अफसाना निगारी जो है वो मुझसे कम से कम एक, मुझे एक तो पूरी रात चाहिए होती है एक अफसाना लिखने के लिए
1: जी।
0: आप मुलाजिम पेशा लोगों को सारी रात कहाँ फुर्सत मिलती है, या बाज औकात जो बात जहन में होती है वो पूरी तरह से पक नहीं पाती है जब आपको लिखने का वक्त है तो
1: जी,
0: या जब जहन में बात है तो उस टाइम वक्त नहीं है लिखने का
1: जी।
0: तो इसी दौरान में कभी कुछ ख्याल जो है वो मेरे, मुझे नज्म की सूरत में मेरे पास में। अच्छा, मैं शायरी में भी कहूँ, प्रदाप्ता शायरी की तरफ मैंने कभी तवज्जो नहीं की, यानी कभी भी गजल कहने की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी से उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता नहीं बनाया, नसर लिखने वाले को उसकी जरूरत नहीं होती है। तो मैंने फिर नज्म का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि उर्दू में जो नज्म कही जाती थी मुझे वो नज्म भी कुछ ज्यादा भाती नहीं थी।

0: न्यूज़ में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे मुख्तलिफ वजारतों में इत्तलाआती जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। आखिर में एक सवाल बहुत मुख्तसरन के जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनके लिए आप अगर कोई पैगाम देना चाहें, आपका इतना लंबा एक सफ़र रहा है और आपने इतनी इल्मी अदबी कामयाबियाँ हासिल की, नए लिखने वाले जो हैं वह अपने सफ़र को कैसे आगे बढ़ाएं?
1: देखिए, जहाँ दो बातें मैं समझ पाता हूँ, एक तो यह है कि पढ़ना चाहिए बहुत, और अगर आप अदब लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ अदब पढ़ना नहीं होता है, आपको सियासत, सहाफत, नफ्सियात, समाजियात, फ़लसफ़ा, तारीख़ और दुनिया में क्या हो रहा है, यानी साइंसी तौर पे इस दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही
0: उन सब
1: हैं,
0: पे भी नजर रहे।
1: इन सब पे भी आपकी नज़र होगी। क्योंकि ये इंसानी जहन जो है वो ऐसा नहीं है कि आम के बाग में आम का बीज बो दिया तो आम का पेड़ निकल आएगा। इंसानी जहन जो है वो हमेशा नई चीज़ दरियाफ्त करता रहता है, नई बातों की तरफ सोचता रहता है, और वो नई बातें आपके जहन में किसी भी लिखने वाले के तभी आ सकती हैं। वो अपनी दुनिया तभी बना सकता है जब उसने पिछली दुनियाओं से, सारी दुनियाओं से कुछ कुछ हासिल किया हो, अक्स किया हो।
0: जी
1: और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं आजकल तो, और भी ज्यादा सोशल मीडिया के ज़माने में खास तौर से नसर की तरफ लोगों की तवज्जो कम हो गई, कि वो जो शायरी भी करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि देखिए, आपको पढ़ना जरूर चाहिए, आप खूब पढ़िए। क्योंकि नसर पढ़ना जो है वो इसलिए जरूरी है कि नसर आपके अंदर तनकीदी शऊर पैदा करती है, तज्ज़िया करने की सलाहियत। नसर तज्ज़ियाती ज़बानों में लिखी जाती है, तो जब तक कि आपके अंदर खुद तज्ज़िया करने की सलाहियत नहीं होगी, आप कोई अच्छा तख्लीक बहुत मुमकिन है, वह भी तौर पे कुछ हो जाए इंसान से एक अलग बात है, कोई बहुत एक आध शेर बहुत अच्छा कह लेता है जिंदगी में, लेकिन अगर आप अच्छा शायर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे नज़र निगार बनना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अदब जो है वो कोई आजकल थोड़ी जल्दी जल्दी करने लगे हैं लोग, लेकिन अदब का मामला जो है ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, आपको 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पैदल चलना है, ये वो वाला मामला है। धीरे धीरे रास्ते में आपके कामयाबियां भी आती रहेंगी, लेकिन किसी कामयाबी से मुतमईन नहीं होना है, हर
0: और
1: कामयाबी
0: आगे
1: को
0: बढ़ते
1: समझना
0: रहना
1: है।
0: है।
1: जी
0: और उलूम के जितने सोते हैं सबसे फैजियाब
1: सबसे
0: होना है,
1: फैजियाब
0: जितनी असनाफ हैं सबको पढ़ना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये पैगाम है हमारे आज के मेहमान खुर्शीद अकरम साहब का, मशहूर फिक्शन निगार, शायर, मानामा आजकल के साबिक मुदीर, मुतरजिम और उसके अलावा नक्काद। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अकरम साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और अपने इल्मी अदबी सफर के बारे में हमसे गुफ्तगू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मालिक अस्तर साहब, और उर्दू मजलिस का भी शुक्रगुजार हूँ।
0: आदाब।
1: आदाब।
2: सामईन, अभी आप जनाब खुर्शीद अकरम की बातचीत सुन रहे थे। आपसे गुफ्तगू कर रहे थे जनाब मालिक अस्तर। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रूबरू, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतजार अली सैफी ने। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की मोहम्मद अली कमाल को आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब आप सुनेंगे समाचार, सबसे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: 印度德里广播电台从印度时间5:15到6:45后，16:17:30向亚洲播送普通话节目。朝间广播频率为15280千赫，晚间广播频率为15410千赫。听众朋友们，你们正在收听全印度电台应用程序和全印电视台免费的微信盘上播放的全印度电台的世界广播。听众朋友们，请收听班里吉善马哈拉弹的一个古典乐器。
1: उसमें छोटी छोटी तिहाइयां जो पहले से बनाई हुई नहीं है यहीं पर बनेगी और संपर आएगी। आप लोग कृपा करके देखने से उपज

0: 听众朋友们，今天我们的普通话
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी मैं हूं कविता और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे मेरे सहयोगी
3: संचय जैन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार
2: तो आज के इस कार्यक्रम में जिन खेल गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी उसमें हम शामिल करेंगे क्रिकेट को साथ ही साथ बात होगी एथलेटिक्स की इसके अलावा शूटिंग आर्चरी अन्य खेल गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम को स्पेशल न्यूज के साथ क्योंकि हम सब जानते हैं संचित की जो क्रिकेट का रोमांच है वो सभी के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा चढ़ता है और इस वक्त तो आईपीएल का रोमांच है और आईपीएल में मुकाबले जो है वो एक के बाद एक बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं
3: बिल्कुल कविता कल दो अच्छे मैच खेले गए आईपीएल में पंजाब जो कि पहले स्थान पे है हार गए थोड़ी शॉकिंग न्यूज थी बट पंजाब हार गए उनकी बैटिंग नहीं चली और लगातार विकेट गिरती रही वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी कल हार का सामना करना पड़ा उन्हें आज भी एक अच्छा मैच खेला जाएगा हालांकि मुंबई और लखनऊ के बीच में दोनों बॉटम ऑफ द टेबल हैं नौवे और दसवें स्थान पे तो देखने वाली बात है कौन आईपीएल में जीवित रहेगा
2: जी बिल्कुल और अगर बात करें विस्तार से तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 46वें मुकाबले में रविवार को गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए सूर्यांश शेडगे ने 29 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली वहीं मार्क्स स्टोइन्स ने 40 रन की पारी खेली जेसन होल्डर ने 4 विकेट अपने नाम किए साथ ही मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट चटकाए 164 रन के टारगेट को गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया वॉशिंगटन सुंदर ने 6 लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई मौजूदा सीजन में गुजरात की छठी जीत है 12 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ की ओर जो है वो कदम बढ़ा दिए वहीं पंजाब को इस सीजन में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है 13 अंकों के साथ पंजाब अभी भी पॉइंट टेबल में टॉप पर है गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने 41 गेंद पर 57 रन बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने 23 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाए जॉस बटलर ने 22 गेंद पर 26 और निशांत सिंधु ने 15 रन बनाए शुभमन गिल और जेसन होल्डर ने 5-5 रन बनाए राहुल तेवतिया दो रन बनाकर आउट हो गए अर्शद खान 8 रन बनाकर नाबाद रहे पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह और विजय कुमार वैशाख ने 2-2 विकेट लिए मार्को यान सेन और मार्कस ने 1-1 विकेट लिया वहीं अगर बात करें आज खेले जाने वाले मुकाबले की लेकिन जैसा मेरे साथी संचित ने बताया उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला है लेकिन जेसन होल्डर जिन्होंने कल अपनी टीम को काफी अच्छे एक पोजीशन में पहुंचाया जीत के बाद क्या कहना था लीजिए सुनिए
4: I think you sum it up quite nicely. You know, I guess that's pretty much how has been our template for the season, our seasons before as well too. You know, we've got some solid players. You know, and the beauty about how we've been playing is that you know it's not one individual doing it every single day. You know, different players are stepping up on different days. So, I think we're still arguing.

टीम में जीतने के लिए आई है संचित, तो जिस तरह से अभी आईपीएल का रोमांच जो है दिन दिन करके बदल रहा है, अगर पंजाब की बात करें तो काफी अच्छी पोजीशन में है पंजाब, हार गई लेकिन टॉप पर है। उसके साथ साथ आज का जो मुकाबला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों के लिए ही ये मुकाबला

0: गए, बहुत ही करो या मरो मैच कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबले खेले जा रहे हैं तो उसी में हम ये बताएंगे कि कौन से जो मैचेस हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं और क्या होने वाला है आज के मैच में।
1: जी बिल्कुल कविता, देखिए मुंबई और लखनऊ का जो मैच है इसमें दोनों ही टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है। जो भी टीम ये मैच हारेगा तो ऑलमोस्ट समझा जाएगा कि वो आईपीएल 2026 से बाहर ही हो जाएगा। दोनों ही टीम स्ट्रगल करती आई हैं। लखनऊ की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है, वैसे ही मुंबई की टीम बहुत अच्छी है, इंडियन प्लेयर्स भरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही टीम ने इस साल एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं किया है जिसकी वजह से वो 9वें और 10वें स्थान पर है।
0: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। एमआई और एलएसजी के बीच ये मुकाबला दुबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। और जिस तरह से दोनों ही टीमें खेल रही हैं, दोनों ही टीमों के लिए मुकाबले, जैसा मेरे साथी ने कहा, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है कि करो या मरो के मैचेस हैं, क्योंकि आगे जाना है। तो आज की जो ये परफॉर्मेंस है वो इन्हें जीतनी ही पड़ेगी। और अब क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट टेबल है वो हम आपको बता दें, लेकिन पॉइंट टेबल में जैसा मैंने कहा कि पंजाब की टीम है वो टॉप पोजीशन पे बनी हुई है 13 अंक लेके। आरसीबी की जो टीम है वो 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। एसआरएच भी तीसरे पायदान पर है 12 अंकों के साथ। वहीं आरआर जो है वो यहां पर चौथे पायदान पर है। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो वो 5वें पायदान पर है। और निचले पायदान पर दोनों टीमें एलएसजी और एमआई दोनों ही 9वें और 10वें पायदान पर है। तो देखते हैं कि संचित आज का जो ये मैच है इसमें क्या रहता है दोनों ही टीमों के लिए। और फिलहाल अगली जो खबर है टेबल टेनिस से जुड़ी उसके लिए चलते हैं अपने सहयोगी संचित के पास।
1: आइए अब बात करते हैं आईटीटीएफ वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि लंदन में खेली जा रही है उसके बारे में। भारतीय पुरुष ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर आकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। राउंड ऑफ 32 में भारत का मैच अब ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच मंगलवार 5 मई को खेला जाएगा। भारत ग्रुप स्टेजेस में अपने तीनों मैच जीतकर पहले स्थान पर रहा। वहीं ऑस्ट्रिया की बात करें तो वो भी अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहा। भारत और ऑस्ट्रिया में जो भी मैच जीतेगा वो स्लोवाक रिपब्लिक या फिर साउथ कोरिया साथ। वहीं महिलाओं की बात करें राउंड ऑफ 32 में भारत का मुकाबला यूएसए से होगा और ये मैच भी मंगलवार 5 मई को खेला जाएगा। भारत और यूएसए का मैच में जो भी जीतेगा वो इंग्लैंड और यूक्रेन से खेलेगा। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यूएसए भी ग्रुप स्टेज में पहले स्थान पर रहा था, मतलब कल एक लाजवाब मैच देखने को मिल सकता है। आईटीटीएफ वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो ये लंदन में 28 अप्रैल को शुरू हुई थी और 10 मई तक खेली जाएगी। ये टेबल टेनिस खेल जगत की सबसे प्रमुख टीम प्रतियोगिता है। पुरुषों की टीम स्वेथलिंग कप के लिए खेलती है, वही महिलाओं की टीम कॉर्बुलियन कप के लिए। इस साल की प्रतियोगिता बहुत ही खास है और ये इसलिए खास है क्योंकि आज से ठीक 100 साल पहले लंदन में ही पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई थी 1926 में।
0: तो जिस तरह से संचित ने बताया बहुत ही खास है। और अभी सिचुएशन जो है वो अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के नजरिए से देखें तो लगातार जो टेबल टेनिस में मुकाबले हो रहे हैं अभी बहुत स्ट्रगल हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कई इवेंट्स में करते नजर आते हैं संचित, क्योंकि कुछ ही गिने चुने नाम है हमारे पास टेबल टेनिस में जो भारतीय जो टीम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें भी जो रिजल्ट है समटाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, लेकिन हर एक खिलाड़ी जैसा मैंने कहा कि वो जीतने के लिए ही खेलता, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को मिलता है जब भी किसी बड़े इवेंट में खेलने के लिए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल कविता, और टेबल टेनिस की टीम की जहाँ तक बात करें तो भारतीय टीम अच्छा खेलते आई है और दोनों पुरुष और महिलाओं की टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई है। तो देखने वाली बात है कि वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, उनकी आगे जाने की पूरी आशंका है। और देखते हैं अभी स्ट्रांग टीम्स जो कि चाइना कोरिया जैसी टीम्स हैं उनके साथ भी उनका मैच हो सकता है। सो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं।
0: जी बिल्कुल, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। बात करते हैं हम यहां पर एथलेटिक्स की। गैब्रॉन में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 जो कि दो और तीन मई को खेली गई, उसमें अगर भारतीय जो खिलाड़ी हैं, भारतीय जो एथलेटिक्स प्लेयर रहे हैं, उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सारे मुकाबले जो हैं वो रविवार को खेले गए, और मुकाबलों के बाद कई देशों की टीमों ने आगामी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। मिश्रित 4x100 मीटर और मिश्रित 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं के फाइनल के साथ ही बुडापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 के लिए पहली टीमें तय हो गई हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक जो विज्ञप्ति है उसके माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। बुडापेस्ट 2026 के लिए क्वालिफिकेशन की अगर टीमों की बात करें तो मिश्रित 4x100 मीटर रिले में कनाडा, जर्मनी, जमैका, नाइजीरिया, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीर्ष 6 में रहकर क्वालिफिकेशन हासिल किया। वहीं मिश्रित 4x400 मीटर रिले में ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जमैका, केन्या, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जगह बनाई। अगर हम बात करें रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की इसमें, तो मिश्रित 4x100 मीटर में जमैका ने 39.62 सेकंड का समय निकालते हुए अपना ही विश्व रिकॉर्ड बेहतर किया, जबकि कनाडा दूसरे स्थान पर रहा। मिश्रित 400 मीटर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने काफी अच्छा समय निकाला और प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि जमैका ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के जरिए बीजिंग में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के लिए कुल 72 जो टीमें हैं उन्होंने सीधा क्वालिफिकेशन हासिल किया। शनिवार को 48 टीमों ने जगह बनाई थी, जबकि बाकी 24 टीमों का फैसला रविवार को हो चुका है। मेजबान देश जो थे बोत्सवाना ने पुरुष 400x400 मीटर रिले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सबसे यादगार पल दिया। प्रमुख जो पुरुष 400x100 मीटर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक काफी अच्छी जीत के साथ यहां पर जो प्रदर्शन है वो किया। और अगर भारतीय हम दल की बात करें तो भारतीय दल का जो प्रदर्शन है वो तो कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि कुछ जो सिचुएशन है भारतीय प्लेयर्स के लिए वो अच्छी नहीं रही। कई बार जो हमारे प्लेयर हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और इंजरीज मुझे लगता है एक खिलाड़ी के जीवन में आते जाते रहती है संचित। और कई बार जो सिचुएशन है, यानी जब हमने कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को कहते सुना है कि मैदान पर चैंपियन जिस दिन उतरते हैं उस दिन ही डिसाइड होते हैं, तो कई बार जो परिस्थितियां हैं वो साथ नहीं देती। लेकिन भारत ने यहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अभी काफी जो तैयारियां हैं उनमें अभी भारत को देखना होगा कि वो किस तरह से आने वाले जितने भी चैंपियनशिप है उसमें अपना जो प्रदर्शन है उसे बेहतर करें। यदि बात करें हम यहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो गोल्ड, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जिन जिन टीमों को मिले, मेंस 4x400 मीटर बोत्सवाना को गोल्ड मेडल, साउथ अफ्रीका को सिल्वर मेडल और ऑस्ट्रेलिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स्ड 4x100 मीटर जमैका को मिला है गोल्ड मेडल, कनाडा को मिला है सिल्वर मेडल, यूनाइटेड स्टेट को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस 4x100 मीटर यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वहीं साउथ अफ्रीका को सिल्वर मेडल और जर्मनी को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस 4x100 मीटर जमैका ने जीता है गोल्ड मेडल, कनाडा ने लिया है सिल्वर मेडल, स्पेन को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस 4x400 मीटर नॉर्वे ने लिया है गोल्ड मेडल, स्पेन ने लिया है सिल्वर मेडल और कनाडा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स 4x400 मीटर यूनाइटेड स्टेट ने जीता है गोल्ड मेडल, जमैका की झोली में आया सिल्वर मेडल और ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन फिर से वापस आते हैं हम अपने भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे, जो यहां पर एक पहचान भी नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि उस यादगार पलों में भी नहीं आ पाए। बहुत सारे प्लेयर्स से यहां पर उम्मीदें थी, लेकिन इंजरीज की वजह से कुछ प्लेयर्स तो पीछे ही रह गए और कुछ के लिए एक्सपोजर जो है वो मिला, लेकिन एक्सपोजर का फायदा कितना मिल सकता है आने वाले जो चैंपियनशिप है उनमें, हमने बात की है एथलेटिक्स कोच दिनेश रावत से। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं।
2: इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कह सकते हम, रिकॉर्ड भी 4x100 मीटर ये इवेंट है, फर्स्ट अभी पिछले एक साल से स्टार्ट हुआ है, तो रिकॉर्ड उसमें यानी दूसरी तीसरी बार तो टोटल दौड़े हैं, रिकॉर्ड अपना भी बन जाएगा वो तो इतना, यानी कि परफॉर्मेंस हमारी काफी अच्छी रही। वहाँ तैयारी मैंने काफी की हुई थी, जैसे मैं सुन भी रहा था देख भी रहा था, चीज जो थे एक ही जगह पे जैसे रिलायंस फाउंडेशन में कर रहे थे 4x100 मीटर वाले, उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं जो देनी चाहिए थी।
0: ये जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे मूवमेंट ऐसे बने जिसमें टीम इंडिया यहाँ पे दुर्भाग्यशाली रहे?
2: दुर्भाग्यशाली भी कह सकते हैं, क्योंकि 4x100 तो बैटिंग एक्सचेंज का गेम होता है, ये इतनी प्रैक्टिस करें, थर्ड टाइम है इनका 4x100 बैंस की टीम का, जो उन्होंने बैटिंग एक्सचेंज ही नहीं हो पाया। मैं तो सोच रहा था कि अच्छा करेंगे, पर रिकॉर्ड कम से कम इंडिया बैटर रिकॉर्ड तो बेस्ट करा था, बेस्ट करना चाहिए था इनको, और 4x4 में अनलक्की कह सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छा कर रहे थे, उससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी 4x400 मीटर मैन की टीम से, क्योंकि अमोद जैकब 300 मीटर के फैन थे जब इंजर्ड हुआ उस टाइम, इंडिया की टीम बेस्ट 3 में चल रही थी और हमारे जो बेस्ट दो रनर थे ना लास्ट के लिए रखे हुए थे, उनके चांसेस काफी अच्छे थे।
0: तो यहाँ पर आपको कमी क्या नजर आ रही है, जैसे आपने कहा कि ये तीसरी बार था तो एक पैटर्न तो समझ में आता ही है और खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करते हैं, तो कमी क्या लगती है आपको?
2: इनका यानी कि इनका बड़ी बड़ी मीटों में जब कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होता है तो उस समय

0: इनका घबरा गया, लग रहा है इस तरह से एक्सपोजर इनको और चाहिए थे, इनको और देना चाहिए था, इनको कॉम्पिटिशन बाहर देश में और खेलने चाहिए थे। कॉम्पिटिशन तो इतना टफ था कि वर्ल्ड के टॉप जितने टीमें थी मगर इंडियन टीम भी प्रैक्टिस कर रही थी। अब हो जाता कभी कभी, अब देखते नेक्स्ट टाइम, अभी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें मुझे लगता है अच्छा करें, क्या पता।
1: एक कोच के नजरिए से आपको क्या लगता है किस तरह से इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी?
0: अब ये अभी जैसे एक्चुअली ऑफ सीजन था, अभी सीजन अगर स्टार्ट हुआ है तो अभी फील्ड में भी नहीं खेलनी है। अब जैसे मेन इंडिया का टारगेट मेरे को जहां तक लगता है एशियन गेम्स का है, बस एक 4x4 की जो मैन की टीम थी उसका चांसेस था, बाकी इनका टारगेट एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स में जो होप है कि इंडिया 4-5 मेडल लेगी रिले में ही, क्योंकि एशियन लेवल में इंडिया का टीम अच्छा है, क्योंकि उसमें चाइना, जापान है, उसके बाद इंडिया ही है। अब देखते हैं, होप करते हैं कि एशियन गेम्स हम अच्छा करें और ये टीम जो अभी एक्सपोजर मिल गया एक और चैंपियनशिप खेल के, उस एक्सपोजर

0: तहत शुरू की गई योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गांवों में पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट तो कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करके उसे बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई तो बढ़ेगी, खाना पकाने के लिए सस्ती और स्वच्छ गैस भी मिलेगी और खेतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके की है जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया था और इससे जो है खेतों में जो यूरिया हम अभी तक इस्तेमाल करते आए थे उस पर निर्भरता कम होगी। तो इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान उठा सकते हैं, सहकारी समितियां उठा सकती हैं, ग्राम पंचायतें उठा सकती हैं और इसके आवेदन करने के लिए सरकार का जो पोर्टल है govardhan.nic.in पर जा सकते हैं या फिर अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क किया जा सकते हैं। बिल्कुल,
1: तो इस प्रकार की जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, धुआं मुक्त रसोई और बेहतर स्वास्थ्य, एक जो सोच थी वो साकार हो रही है और धुआं मुक्त रसोई है, यानी कि जहां पर सिलेंडर पहुंच नहीं सकते ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर ये जो चूल्हे हैं वो बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं, धुआं भी कम छोड़ते हैं, महिलाओं की सेहत में भी सुधार हो रहा है। तो ये जो स्वच्छ ईंधन का लाभ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार का यही प्रयास है। ऐसे ही राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम चल रहा है और एक जो सतत नई योजना अभी जो चली है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, उसका भी मतलब है कचरे से वाहन ईंधन बने, नई कमाई हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। इन सब से जो चंद्रकला जी ये सरकार योजनाएं चला रही है इनसे आपको क्या लगता है? आत्मनिर्भरता तो है ही, एक मजबूत नींव की तरह काम कर रही है। तो जैसे कि जहां पहले सिंचाई के लिए बिजली आने का इंतजार करना पड़ता था, महंगा डीजल खरीदना पड़ता था, अगर किसान ने अपनी बंजर जमीन पर सोलर पंप लगा लिया है, मुफ्त बिजली उसे मिल रही है, बची हुई बिजली सरकार को बेच रहा है तो उसे पेंशन मिल रही है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, ये पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर की योजनाएं, बिल्कुल ये वाला लाभ तो किसानों को और हमारे ग्रामीण भारतीयों को पहुंचा ही रही है इसमें।
1: जी, और पर्यावरण और स्वास्थ्य की सेवा भी हो रही है और आत्मनिर्भरता का रास्ता है वो प्रशस्त होता जा रहा है। सरकार ने बड़े सुविचारित कार्यक्रम बनाए हैं, मगर जरूरी है कि हम सब भी उसमें आगे बढ़े, उन्हें मन से अपनाएं और जितना भी हो सका आपको बताया कि आप कहां आवेदन करें, आप जानकारी ले सकते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत से मदद ले सकते हैं, पास में जो आपका क्षय ऊर्जा विभाग है, केंद्र है, वहां से आप मदद ले सकते हैं, जरूरत है आगे बढ़ने की।
0: बिल्कुल नीलम जी, एक चीज और जो मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहती हूँ वो है ऊर्जा की बचत। आपने ऊर्जा के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय योजनाएं उनकी बात की, लेकिन अगर हम बचत की बात करें, बचत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक बार एक छोटा सा एक रिमाइंडर के तौर पर है ना, हम बता दें कि अगर रसोई गैस बचानी है तो खाना पकाते समय प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, बर्तनों को ढक करके खाना बनाएं, दाल चावल और जो दूसरे अन्य अनाज हैं उनको भिगा करके बनाएं और उबाल आने पर गैस की आंच को धीमा कर दें, अगर छोटा बर्तन है तो छोटे बर्नर में खाना बनाएं, बड़े बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, सभी जानते हैं, लेकिन एक बार अगर हम उसको याद दिलाते रहें तो वो फिर ध्यान में आ जाता है कि नहीं हमें बचाना है। तो इस तरीके से हम 30-50% तक की गैस की बचत कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम वाहन चलाते हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं तो 30 सेकंड से अधिक तक अगर रुकना हो तो अपना इंजन बंद कर दें, है ना, टायरों में सही हवा भरें, कार कूलिंग करें, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, तो इससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा।
1: यानी कि छोटी छोटी चीजों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चंद्रकला जी का यही कहना है। और चंद्रकला जी धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए।
2: आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ईंधन, इस विषय पर चंद्रकला से नीलम मदान की बातचीत आप सुन रहे थे। बहन, ऊर्जा बचत और स्वच्छता सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक मिशन चला था स्वच्छ भारत, कि देश के चप्पे चप्पे को स्वच्छ और साफ रखा जाए।
3: जी हाँ, इसके बारे में अभी हम अपने भाइयों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले करवाते हैं मनोरंजन जयवीर भाटी की आवाज में ये रागनी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयवीर भाटी की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था महाभारत का। और देखिए अभी अपने भाइयों को सूचना देते हैं कल का जो हमारा फोन इन कार्यक्रम है उसके बारे में, कि कल हमारा जो फोन इन कार्यक्रम है वो 6:30 से 7 बजे तक और 7:05 से 7:30 बजे तक लगातार चलेगा। तो आप हमारे स्टूडियो में फोन करके सीधे हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। और विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 23 42 10 82, 23 42 10 83। तो ये तो हमारे कल के फ़ोन इन कार्यक्रम की सूचना थी। और देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारी सरकार ने लोगों को जागरूक किया है कि आप अपने घर के आसपास किस तरह से, अपने गांव मोहल्ले सड़कों
1: जी,
0: और
1: हर
0: शहरों
1: सार्वजनिक
0: को किस तरह साफ करें, किस तरह गंदगी ना फैलाएं, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा किस तरह अलग अलग करें, इन सब बातों का ज्ञान हमारी सरकार जगह जगह हमारे जो कूड़े वाले आते हैं, भैया आते हैं जो हमारे सामान लेने आते हैं, हमारी गंदगी जो घर में डस्टबिन में होती है उनको, तो आप भी थोड़ा सा योगदान दें तो सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करें ताकि ज़्यादा परेशानी उनको ना करनी पड़े।
1: जी जी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सूखा और गीला कचरा जो है वो अलग अलग हो। और देखिए, जो मिशन है ना, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था, उसका मकसद ही है कि हर सार्वजनिक स्थल, वो छोटी जगह हो बड़ी जगह हो ना, अपने आसपास हर जगह, यानी पूरे भारत को स्वच्छ चमकता दमकता बनाने का ये संकल्प बिठा के रखें, और उसी के अनुरूप जो है ना प्रतिदिन कार्य करें। और
0: बिल्कुल, और
1: उसका सही तरीका यही है कि आप अपने घर से शुरुआत करें।
0: बिल्कुल देखिए गांव और शहर, आपका घर, ये सब चीज़ें अगर साफ सुथरी रहेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा और हमारा देश भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: इसी के साथ हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव तुषार पारासन और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा एनडीए की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है।

0: चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए और आज सुबह से उनके मतों की गिनती जारी है और हम पल पल अपडेट आप तक ला रहे हैं। क्या रुझान है, क्या परिणाम है, इन पर अपडेट देते हुए हम विशेषज्ञों से चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सोनू सूद और मेरे साथ मेरे इंग्लिश के को एंकर हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। वैभव, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
2: सोनू, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग यू लाइव फ्रॉम आकाशवाणी एंड वी वेलकम इन दिस प्रोग्राम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सर्जना शर्मा मैम। वेलकम टू दिस शो।
3: थैंक यू सो मच।
1: सो सर्जना जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
3: आभार सोनू जी।
1: जी, और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में ये सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से ये 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल 2 सीटों पर आगे है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं और एक पर आगे है। असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वे 90 सीटें पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वह 11 सीटें जीत चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं।
2: टॉकिंग अबाउट केरलम, द कांग्रेस लेड द चार्ज विद 63 सीट्स व्हाइल द IUML एडेड 21 गिविंग द अलायंस अ डोमिनेंट एज अक्रॉस द स्टेट। अदर यूडीएफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग केरला कांग्रेस फैक्शंस एंड स्मॉलर एलाइज ऑल्सो चिप्ड इन अंडरलाइनिंग अ ब्रॉड बेस्ड मैंडेट फॉर द कोअलिशन। लेटेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट चीफ मिनिस्टर एंड CPIM लीडर Pinarayi Vijayan has defeated VP Abdul Rashid of Congress in Dharmadam constituency by more than 19,000 votes.
1: सर्जना जी, क्या कहेंगी आप, ये जो विधानसभा चुनाव आए हैं, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, इन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है जिस तरह का एक स्वीपिंग विक्ट्री लगता है कि बीजेपी को मिलने वाली है, उस तरफ अग्रसर है, 200 से अधिक सीटें, किस तरह से देखती हैं आप?
3: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति, अगर आप इतिहास देखें, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 30 ईयर तक कांग्रेस रही, फिर 34 CPM रही और फिर 15 साल TMC रही और एक बार जो सत्ता से गया वो लौट के नहीं आया। और जबकि TMC ने तो बाकी अपनी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुत कम समय, 15 ईयर, आधा ही उन्होंने किया था
1: जी।
3: पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजेपी के लिए और इतनी बड़ी है कि इसको वोटों से ज्यादा आइडियोलॉजी की हम एक जीत कहेंगे, एक आइडियोलॉजी की जीत है और विरासत के साथ विकास, जो बीजेपी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, उसको भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब की बात कही और रक्षा, महिला सुरक्षा की बात कही, इसके अलावा कहा कि हम आपको जो घुसपैठिए, जो सीमा सुरक्षा की जो बात कही, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए। और दूसरा, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति, जो स्ट्रैटेजी थी, जमीन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जिसको बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तक से बात करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और संस्कृति से जुड़ाव, जो अभी आज देखिए, आज मोदी जी जब बीजेपी मुख्यालय में गए हैं तो पूरी तरह से भद्र लोक, जो बंगाल के भद्र लोक होते हैं,

0: उस तरह की वेशभूषा पहन के, बंगाली स्टाइल की, बिल्कुल झक वाइट धोती, उसके ऊपर बंगाली स्टाइल का कुर्ता और उसके ऊपर अंगवस्त्रम पहनकर गए।
1: तो विरासत और विकास दोनों का जो एक समागम है उसका एक ये प्रतीक है।
2: सर्जना जी, हाउ वुड यू सी दिस इलेक्शन विक्ट्री फॉर द बीजेपी विच हैज फॉट different opposition parties for decades now in Bengal, starting from their ideologue, their mentor, Shyama Prasad Mukherjee ji. Now they have been able to form, or they are being seen as someone who will form a government in Bengal. How do you see these results? And not just for the national issues that were raised up, just mentioned by you, by the BJP, but also the issues, the smaller issues that were picked up by TMC, saying that this is a fight between outsiders and insiders. How do you see that result?
0: See, I see this result you have mentioned about Shyama Prasad Mukherjee.
2: Yes, ma'am.
0: I think ancestors, we have ancestors and we owe many things to them.
2: Absolutely.
0: I think Modi ji, whatever BJP owed to Shyama Prasad Mukherjee, today they have paid the pitrarana to Shyama Prasad
2: paid
0: Mukherjee.
2: That back.
0: Yes. So in 1952,
1: ab hum chalte hain BJP headquarters Delhi, jahan se
3: भारत माता की, जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की, आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदर पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने

एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत

बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल

साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि माँ गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं।

हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते दो साल के ट्रेंड को देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गए छे, साथियों

इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज

बच्चों को उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को, हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही

भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 2500 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा

इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करे। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करे। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था, जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी, और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था, और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है।

साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था

बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेप के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं।

0: विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशन था उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा।
1: अभी हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुन रहे थे। सर्जना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और मुझे और वैभव श्रीवास्तव को अब इजाजत दीजिए। 9:15 बजे हम फिर जनादेश 2026 लेकर आपके बीच होंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

माई मैं मन को मान ना त्यागियो। भाई दविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ हुण सरवण करदे हां अगला शब्द भाई गोपाल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच।

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। भाई गोपाल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। हुण सरवण करदे हां भाई निर्मल सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच ए शब्द।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ श्रोताओं, खेल कोई भी हो, सिकंदर वही कहलाता है जो बाजी को पलटना जानता है। और कहते हैं ना कि हार हमें और भी मजबूत बनाती है। उस हार से सबक लेकर कमियों को दूर करना है और बन जाना है अपने सफर का, अपनी जिंदगी का सिकंदर, क्योंकि दुनिया उसे ही याद रखती है जो इतिहास रचना जानते हैं। इसीलिए अगर किसी भी मोड़ पर असफलता मिले तो रुके नहीं, बल्कि दोगुनी मेहनत से इस असफलता को सफलता में बदलने का संकल्प लें, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

बिल्कुल श्रोताओं, गम से कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि हार को हराना है, यही मजबूत इरादा रखना है। जिंदगी को जितने भी पॉजिटिव नोट पर आप जिएंगे, ये जिंदगी उतनी ही रंगीन होती जाएगी। जिंदगी सफर ही कुछ ऐसा है जहाँ हर पल नया गीत है, और इस गीत को गुनगुनाते जाना है, खूबसूरत बनाना है जो हमारे ही हाथ में है। क्योंकि जिंदगी के इस रास्ते पर अगर थम गए तो फिर कुछ भी नहीं है।

0: बिल्कुल श्रोताओं, रुकना नहीं है, थमना नहीं है और बस चलते ही जाना है। इसी गीत के साथ हमारा आज का गीत मालिका का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या यानी कि हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 100

0: दो सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में BJP NDA सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का

0: सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थटेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 22 सीट पर आगे चल रही है। रियासत में सख्त सहरुखी मुकाबले के दौरान 172 सीटों के नतीजे का ऐलान हो चुका है, जबकि मजीद 62 सीटों के रुझान दस्तियाब हैं। चुनाव कमीशन के मुताबिक वजीर आला एम के स्टालिन की क्यादत वाली हुक्मरान द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके ने 41 सीटें जीत ली हैं और 18 सीटों पर आगे है, जबकि उसकी हरीफ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम AIADMK 15 सीटों पर आगे है और वो 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। PMK 2 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 2 सीटों पर आगे है, जबकि 3 सीट हासिल कर चुकी है। BJP, DMDK, CPI और AMMKMNKZ ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। CPIM और IUML ने 2-2 सीटें जीती हैं। VCK ने 1 सीट हासिल की है और 1 सीट पर आगे है। अहम उम्मीदवारों में मौजूदा वजीर आला एम के स्टालिन, जो चेन्नई में वाके अपने आबाई सियासी गढ़ कोलाथुर हलके से चुनाव लड़ रहे थे, TVK के उम्मीदवार VS बाबू से तकरीबन 8,700 वोटों के फर्क से हार गए। नायब वजीर आला उदयानिधि स्टालिन चेन्नई के चेपॉक थिरुवालिकेनी हलके में TVK उम्मीदवार सेलम डी के खिलाफ तकरीबन 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। TVK के सरबरा विजय पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों हलकों में 17 मरहलों के वोटों की गिनती के बाद आसानी से सबकत बनाए हुए हैं। साबिक वजीर आला ओ पनीर सिल्वम, जो हाल ही में DMK में शामिल हुए थे, 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया NR कांग्रेस की क्यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत की वापसी मुतवक्के है। उसने 30 रुकनी असेंबली में सीटें हासिल करके वाजे अक्सरियत हासिल कर ली है। AINRC ने 12 सीटें जीत ली हैं और BJP 4 सीटें जीत चुकी है और 2 पर बढ़तरी कायम रखे हुए है। AIADMK और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1-1 सीट हासिल की है। DMK ने 2 सीटें जीती हैं और 3 पर आगे है। TVK ने 2 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट पर सबकत बनाए हुए है, जबकि NMK और LJK ने 1-1 सीट जीती है। आजाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की हैं। वजीर आला एन रंगास्वामी थट्टा चन्नावाडी हलके से दोबारा मुंतखब हो गए हैं। BJP उम्मीदवार और रियासती वजीर दाखला ए नमा सिवायम ने भी अपनी सीट जीत ली है। BJP के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन एक तारीख साज और अदीमुल मिसाल दिन है। उन्होंने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के पार्टी कारकुनान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज शाम नई दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लिए एक नई सुबह का ऐलान है। नीज अवाम ने भारत के अजीम जमहूरियत में अपने यकीन का इजहार किया है और कारकर्दगी पर मबनी सियासत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे में अपना भरोसा जताया है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया कि लोगों के यकीन के सबब कमल दोबारा खिला है। उन्होंने BJP के सदर नितिन नबीन की पार्टी कारकुनों की रहनुमाई करने के लिए सताइश की। उन्होंने कहा कि हार और जीत जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है और इस मरतबा दुनिया ने देखा कि भारत क्यों मादरे जमहूरियत के तौर पर जाना जाता है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों में इख्तदार में हैं और बीजेपी का मंत्र है शहरी भगवान है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोग वाजह तौर पर ये देख रहे हैं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां उम्दा हुक्मरानी है और तरक्की हुई है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि आसाम के लोगों ने मुसलसल तीसरी मरतबा बीजेपी एनडीए में अपना एतमाद जाहिर किया है और ये एक हैट्रिक है। उन्होंने इस जीत को आसाम की तारीख में एक अजीम कारनामा करार दिया।
1: असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।
0: जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल के हर एक बाशिंदे को यकीन दिलाया कि बीजेपी रियासत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में खवातीन महफूज होंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन खत्म होगा और दरअंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पहली काबीना मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाएगी। 5 रियासतों के 7 असेंबली हलकों में हुए असेंबली जिमली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में एक एक सीट जीती है और महाराष्ट्र में भी एक सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की इत्तेहादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने भी एक सीट जीती है। महाराष्ट्र में सुनेत्र पवार ने बारामती जिमनी इंतखाबात में 2,18,930 वोट हासिल करके तारीख रकम की है और मुल्क में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जिन्होंने 2022 उन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में साहिबाबाद सीट से जीतकर 2,14,835 वोट हासिल किए थे। घरेलू शेयर बाजार में आज तकरीबन आधे फीसद का इजाफा दर्ज किया गया। सेंसेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 77,269 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 122 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 24,119 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर शेयर बाजार में इंतखाबी नतायज से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्बत रुझान देखने को मिला। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत के साथ तारीख रकम की। आसाम में भी मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। एनडीए ने पुदुचेरी में अपना इख्तदार बरकरार रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज की जीत को भारत की जमहूरी और आईनी अकदार से मनसूब किया। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने केरलम में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

team

وَإِنَّهُ

Enfin, bien.

Leap gone on.

0: Dean.
1: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं।

0: यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance, NDA government, led by N. Rangaswamy's All India NR Congress, AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
3: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhabanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
2: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress, TMC, in the first election after Special Intensive Revision, SIR, of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, the AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic

ये आकाशवाणी दिल्ली का यार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का या यार लाइव न्यूज 24/7 चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा के गानों सहित गीत सुनहरे। अभी आपने मन्ना डे की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए या यार लाइव न्यूज़ 24/7।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अगला गीत कार्यक्रम गीत सुनहरे में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Kerala, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured two seats each. CPM clinched one seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and MNC TMC have secured 1 seat each. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats. Its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 107 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 233 results have been declared, while trends are available from one seat. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats and is leading on one seat, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats. Indian National

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतनी हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा

0: लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरला में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज करने के बाद हुई है। इसे अप्रैल की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर स्थिति माना जा रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ तूफान आने की भी प्रबल संभावना है, जिसमें हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Kerala, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dol and TMC have secured 1 seat each. In Kerala, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats. Its ally, IUML, added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 108 seats out of 234 constituencies across the state, according to the Election Commission. The ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats. Indian National Congress has won 5 seats. BJP, DMDK and AMM, KMN, KZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and

0: हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: Prime Minister Modi stated that BJP NDA governments are in power in more than 20 states of the country and BJP's mantra is citizen is God. The BJP has appointed senior party leader and union minister Dr. Mansukh Mandaviya and its in charge in Puducherry Nirmal Kumar Surana as central observers for the election of the leader of legislative party in Puducherry. These names were approved by the BJP parliamentary board for central observers. And in IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium in Mumbai last night. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत गजल का। आज के गीतों और गजलों के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन नज़्में, बेहतरीन गीत और बेहतरीन गजलें। कार्यक्रम का आगाज हरिहरन की आवाज़ के साथ।

आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत और गजल का अपनी दोस्त सरिता के साथ। और अभी आपने सुनी देवयानी मजुमदार की आवाज़ में ये खूबसूरत सी नज़्म। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं देश दुनिया से हमें सुन रहे हैं, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से या दुनिया के किसी भी कोने से, तो आप हमें अपने ईमेल भेज सकते हैं। जी हाँ, इस रात की तन्हाई में अगर हमारे साथ अपनी बात आप साझा करना चाहते हैं

शेयर करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com, iprradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात बांट सकते हैं अपनी दोस्त सरिता के साथ।

अभी आपने सुनी अहमद और मोहम्मद हुसैन की खूबसूरत आवाज में ये गजल। लीजिए अगली पेशकश है शंकर एहसान लॉय की आवाज में, और साथ ही साथ एक और गीत पेश किया जाएगा जगजीत सिंह जी की आवाज में। तो आनंद लीजिए बैक टू बैक खूबसूरत गीतों का, गजलों का।

आप आनंद ले रहे हैं गीत और गजलों के कार्यक्रम का। लीजिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली पेशकश सुभाष आनंद की आवाज में। और इसी के साथ गीत गजल कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल, यह आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः 4 बजने को है, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: कार्यक्रम का शुभारंभ हम भगवान अयप्पा की एक स्तुति से कर रहे हैं, स्वर के जे यशुदास का।
1: हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधी।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म, जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम नादब्रह्म का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री सुधा रघुरमन का रागम कंबोजी में गायन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन के बारे में। प्रातः 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति गीत का। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30। आप भक्ति संगीत का आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम वंदना सुनकर। प्रातः 6:10 का वक्त रहेगा वंदना कार्यक्रम का। प्रातः 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर। प्रातः 6:45 का वक्त रहेगा श्री रामचरितमानस से पाठ का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 46।

संगीतिका, इस कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं प्रातः 7:10 पर, 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप आनंद लेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। प्रातः 8

0: बजकर 45 मिनट, स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है। आज आप सुनेंगे विश्वजीत रॉय चौधरी का सरोद वादन। 9:15 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान पत्रिका। मिट्टी दी महक का वक्त रहेगा प्रातः 9:30, आपकी फरमाइश का 10:10 और सब रस का वक्त रहेगा प्रातः 11:10। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को 1 सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। दिल्ली में तेज

0: 228 runs for the loss of 5 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन के बारे में।
2: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा।